ദാമോദർ മാധവേ. വാഹിഗുരു ജി കാ ഖാൽസ, വാഹിഗുരു ജി കീ ഫത്ത്. സൂരജ കിരണ മിലേ ജല കാ ജല ഹുവാ രാം, ജ്യോതി ജ്യോത് രലീ संपूर्ण थी आराम. किरण ते सूरज भावे अलग नहीं, फिर भी दो प्रतीत हो रहे, ते नाम भी दो पै गए, एक सूरज एक किरण. दो ना होते हुए भी दो दिखाई दे रहे ने, चूंकि दो दिखाई दे रहे ने तो नाम भी दो पै गए, सूरज और किरण. सागर ते लहर दो ना होंदे हुए भी दो दिखाई दे रहे, सागर ते लहर चूंकि दो दिखाई दे रहे ने, हैं ते नहीं, इस वास्ते नाम भी दो पै गए, सागर ते लहर. है ते सागर ही सागर, लेकिन सागर झलक रहे है लहरां विच. है ते सूरज ही सूरज, पर सूरज झलक रहे है किरणां विच. चूंकि दिखाई दो दे रहन, हैन नहीं दो, हैन नहीं. एको ब्रह्म द्वितीया नास्ती, ऐसा वेदांती कहते हैं. एको ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. फिर भी चूंकि दो दिखाई दे रहे हैं, पर जब दो दिखाई दे रहे ने ते नाम भी दो पै गए ने, फिर इसका विस्तार होया, फिर दोवां तो चार होए, एक सूरज, एक सूरज दी किरण, एक किरण का प्रकाश, एक प्रकाश दे जो प्रगट हो रहा है, दिखाई दे रहा है. ओ, अगर ये प्रकाश ना हो तो नहीं दिखाई देगा. मैं कई दफा अर्ज कर चुके हैं, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है. अंधेरे ते हिमालय पर्वत भी नहीं दिखाई देता, अंधेरे ते इतना वड्डा सागर भी नहीं दिखाई देता, जमीन तो कई गुणा वड्डा, फिर भी नहीं दिखाई देना. अंधेरे ते सारा शहर भी नहीं दिखाई देता, उचिया उचिया बिल्डिंगा नहीं दिखाई दे, अंधेरे ते जंगल भी नहीं दिखाई देते, सड़कां भी नहीं दिखाई देंदियां, एक लख मनुख बैठा होवे एक भी नहीं दिखाई देता. इस वास्ते अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा भी नहीं है, बहुत वड्डा पड़दा, बहुत वड्डा पड़दा. अंधेरा सब कुछ नु ढक देंदा है, प्रकाश सब कुछ नु प्रगट कर देंदा है, प्रगट कर देंदा है. तो मैं अर्ज करा, जो कुछ भी प्रगट है ये आत्मा दे प्रकाश करके ही प्रगट है, उंज नहीं. एक परमात्मा, एक आत्मा, फिर आत्मा दा ही प्रकाश मन, मन दे प्रकाश करके ही तन है ते सब कुछ है. मैं इस प्रकरण नु कितना खोल सकांगे ते गुरु दी दित्ती हुई समर्था ठीक है, मैं छेड़ बैठा, पर जितनी गुरु दी कला वरतानगे, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करनगे, इस मुख नुक्ते नु मैं थोड़े सामने खोलन दी निमाणी कोशिश करांगा. क्योंकि आम ये दो पंक्तियां दोहराईयां जांदियां, खास कर समागमां दे, सूरज किरण मिले
जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रे संपूर्ण थिया राम। किरण की संपूर्णता उदो ही है जदे सूरज हो जाए, नहीं तो सीमित है। लहर की संपूर्णता उदो है जद सागर हो जाए, नहीं तो सीमित है। सीमित होना दुखदाई है, सीमित होना मनुख की चेतना बर्दाश्त नहीं करते। मनुख हर पख दे हर पासों विस्तार चाहता है, इस वास्ते मनुख नो मौत कबूल नहीं, क्योंकि मनुख जीवन नो सीमित कर दिए। ते मनुख ते इतना जीवना चाहता है, कितना जे जुग चारे आर जा और दसूने। इस वास्ते मौत दा नुकता, मौत दी गल मनुख नो चंगे नहीं चली, असीम जी

उस परम सुख का ना ही परमात्मा है। मनुख नु ऐसा असीम रस चाहिदा है, ऐसा रस चाहिदा है जो कदी बेरस ना हो। उस महारस का ना ही परमात्मा है। मनुख नु ऐसी शक्ति चाहिदी है, ऐसी प्रभुता चाहिदी है, ऐसी ताकत चाहिदी है असीम, जो कदी कमजोरी देच निर्बलता देच बदले ही ना, तब्दील ना हो। उस महाशक्ति का ना ही परमात्मा। मंगते परमात्मा दी है, ठीक है, असीम शक्ति चाहिदी है, असीम जीवन चाहिदा है, असीम सुख चाहिदा है, असीम रस चाहिदा है, असीम आनंद चाहिदा है। मनुख नूं परमात्मा चाहिदा है, परमात्मा तो बिना होर कुछ भी नहीं चाहिदा। मंग ठीक है, प्राप्ति का साधन गलत है। बस इथों जिंदगी गलत हो जाती है, इथों ही मनुख गलत हो जाता है। मंग तो ठीक है, ऐसा केड़ा है जिसनूं सुख नहीं चाहिदा, ऐसा केड़ा है जो रस नहीं चाहता। बेरसी ती किसी नूं नहीं चंगी लगती। ऐसा केड़ा है जो महाशक्ति नहीं चाहता, कमजोरी ती किसी नूं भी नहीं चंगी लगती। ऐसा धन चाहिदा जो रोज रोज वधदा ते जाए, कदी घटे ना। उसे ही परम धन दा नाम परमात्मा है, परमात्मा। मंग ठीक है मनुख की, हर मनुख की ठीक है। इस हिसाब के नाल मेरा मन किसी नु नास्तिक नहीं कहता, नहीं है नास्तिक। कह देवे मैं नास्तिक हाँ, क्या उन्हों रस नहीं चाहिदा, उन्हों सुख नहीं चाहिदा, उन्हों आनंद नहीं चाहिदा, क्या उन्हों शक्ति नहीं चाहिदी, क्या उसनु जीवन नहीं चाहिदा। अगर चाहिदा है तो मंगते परमात्मा दी करदा पे और किस दी करदा। मैं फिर दोहरावां, परम जीवन दा ना ही परमात्मा है, परम रस दा ना ही परमात्मा है, परम आनंद दा ना ही परमात्मा है, परम धन दा ना ही परमात्मा है, परम शक्ति दा ना ही परमात्मा। हर मनुख नु परमात्मा चाहिदा है, पर करीबन करीबन उंगलियां ते गिने जाण वाले मनुखां नूं छोड़ के प्राप्ति दे साधन सारियां दे गलत ने। ऋषि चाण कहिंदे ने, कोलू दे पीड़न नाल ही तेल निकलदा है, पर तिलां नूं पीड़न नाल तेल निकलदा है, रेत नूं पेलण नाल तेल नहीं निकलदा। कहिंदा ठीक है, कोलू दे पीड़न नाल ही तेल निकलदा है, मनदे, पर तिलां नूं पीड़न नाल तेल निकलदा है, रेत नूं पेलन नाल तेल नहीं निकलदा। मनुख जीवन दे कोलू दे च रेत पा लैंदा है, फिर कढ़ना चाहुंदा है परम रस दा ते, परम आनंद, परम जीवन, परम सुख। रेत दे चों तेल कित्थे। मंग ठीक है, मंग नू पूरे करन दे साधन गलत ने, गलत ने, गलत ने। मनुख अपने साधना नू ठीक कर लवे, मंग होने ही पूरी। ऐसे वक्त, ऐसे वक्त लंबे चौड़े चक्रां च ना पैना। एक छिन दे च परम रस, एक छिन दे च परम आनंद, एक छिन दे च परम शक्ति, एको ही छिन्न दे च परम जीवन, एको ही छिन्न दे च परम धन। एक चित जय एक छिन्न दे आयो, काल भास के बीच ना आयो। एक छिन्न एक सैकंड संसार दे च, एक सैकंड दे च ते ऐसा कुछ भी प्राप्त करना कठिन है, पर एको ही सैकंड दे च परमात्मा मिलता है। जिंदगी दे

0: पर जैसे मन आत्मा च लीन होया, आत्मा परमात्मा च लीन हो जाती है। इस तरह की लीनता की अवस्था नु गुरबाणी फिर इंज बयान करती है, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। इस प्रसंग नु मैं फिर किसी जगह संपूर्ण करांगा, ये ठीक है, मैं दो दिन होर इत्थे है। अज शाम नु दास ने श्री गुरु सिंह सभा विकासपुरी हाजरी भरनी है, कल सवेरे श्री गुरु सिंह सभा साउथ अनारकली जमुना पर, उत्थे दास ने हाजरी भरनी है। ते इसे तरीके दे नाल कल शाम दी हाजरी श्री गुरु सिंह सभा प्रशांत विहार विच 24 तरीक गुरुद्वारा संतपुरा तिलक नगर बाबा धर्म सिंह जी का अस्थान, उत्थे हाजरी भरनी है। 24 तरीक शाम दी कालका जी श्री गुरु सिंह सभा उत्थे दास ने हाजरी भरनी है। कोशिश तो यही होगी, पर पता नहीं कलगीधर पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज केड़ी बाली खोलते ने, केड़ा बुआ खोलते ने। इस तो बाद दास ने अलवर चले जाना है, क्योंकि 1-2-3 समागम गुरमत समागम जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपनी कृपा दिती हुई शक्ति समर्था का सदका हर साल करा लेंदे ने, अदकी भी यह समागम चलना हर साल चलता है। जिन्हां जिन्हां सत्संगियां नूं समा मिले पहुंच सकते हैं, 2-2.5 घंटिया का ट्रेन का ते रोड का जो है रस्ता है। इस थां ते हर साल हाजरी भरदे आया सरदार रजिंदर सिंह जी अगले साल का मैनू उसे वक्त नोट कराते हैं, भाई अगला साल नोट करना। तो मैं भी इन्हां नूं कहना हुंदा, गुरु ने जिंदगी रखी सेहत रखी, जरूर हाजरी भरांगे, क्योंकि उस संत दी बरसी है जिहदे उत्ते 2 पंक्तियां बिल्कुल पूरियां उतरदियां ने, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। उसे ही महान संत दा नाम सी संत बाबा अतर सिंह जी, मस्तों आने वाले सतगुरु रहमत करन बख्शिश करन, जिंदगी रही सेहत रही, सतगुरु ने संजोग बनाया, फिर इसे ही स्थान थे इसे ही बरसी देच थोड़े चरण परसांगे। सारयां दा धन्यवाद, महापुरुखां दा धन्यवाद, समूह साध संगत ने एकाग्रता नाल सरवण कीता है, सब दा दास ऋणी भुल चुक दी क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतगुरा साग तुम हर जान हो आपे, अमृते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चुकाए सब सोग संतापे, सुकहो टल गुरु सेविया अहन सुसहज सुखाए, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए, हुआ सिपत खसम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह सिरसांदा साहू, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहू, सतनाम वाहे गुरु साहिब जी, सूही महला तीजा।

0: जुग चारे थान जी पवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम। निहचल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम। जुग चारे थन जी पवै बिन सतगुरु सुहाग ना होई राम। निहचल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम। तिस बिन अवर ना कोई सदा सच सोई गुरमुख एको जानिया थान फिर मेलावा हुआ। गुरमति मन मानिया सतगुर मिलिया तां हर पाया बिन हर नावा मुक्त ना होई। नानक कामण कंता भाव नानक कामण कंता रावे मन मानिया सुख होई। सतगुर सेव थन बालड़ी हर वर पावह सोई राम। सदा होवह सुहागणी फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई गुरमुख बूझा कोई। हौ मैं मार पछाणिया करनी कार कमावा शब्द समावा अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची सुभा हुई। नानक कामण पिर रावे अपना रव रहया प्रभ सुई। गुर की कार करे थन बालड़ी हर वर दे मिलाए राम। हर कै रंग रती है कामण मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरता सब थाई। सच्चा सीगार करे दिन राती कामण सच समाई। हर सुखदाता शब्द पछाता कामण लया कंठ लाए। नानक महले महल पछाण गुरमती हर पाए। सातन बाली थुर मेली मेरा प्रभ्याप मिलाई राम। गुरमती खट चानन हुआ प्रभ राव रहया सब थाई राम। प्रभ राव रहया सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया। सेज सुखाले मेरे प्रभाणी सच सिगार बनाया। कामण निर्मल हौ मैं मल खोई गुरमत सच समाई। नानक आप मिलाई करता नाम नवा निध पाई। कामण निर्मल हौ मैं मल खोई गुरमत सच समाई। नानक आप मिलाई करता नाम नवा निध पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निरवैर अकाल मुहूर्त अजोने सैभं गुरुप्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो,

बहुत सियाना युग है, पढ़ा लिखा युग है, पर मैं अर्ज करा बहुत सियाना ही कुतर्क कर सकता है, उदी तर्क कुतर्क बन सकती है। भोला मनुख अनपढ़ मनुख की करेगा तर्क, सियाना युग है। तो आज जितनी तर्क है पहले नहीं सी। गुरु नानक देव जी ने यह देखे, और गुरु पुरुषोत्तम अवतार ने उन्होंने लीला नु मर्यादा नाल जोड़िया, मर्यादा नु लीला नाल जोड़िया। गीत संगीत श्री कृष्ण की जिंदगी सी, नचते सन टपते सन, गोपियां नु नाल लेके भी नृत करते सन, पर नहीं संगीत ते है गुरु घर दे च भी मर्यादा च। ढोल मरदंग ते तबले ते वजन गए मर्यादा दे च, गीत ते इथे भी गावने हैं मर्यादा दे च। लीला नु मर्यादा नाल जोड़िया, मर्यादा नु लीला नाल जोड़िया। इस गुरु पुरुषोत्तम अवतार ने ऐसा संयोग बनाया, वो मर्यादा भी नहीं जिस ते सच कुर्बान हो जाए, वो लीला भी नहीं के मनुख नु भ्रष्ट करके रख देवे, सारिया मर्यादावां नु तोड़ के रख देवे। गुरु पुरुषोत्तम अवतार तो एक कैसा हो सकता है, उन्होंने मनुख नु जेड़ा नाम दिता, अपने धर्म नु जेड़ा नाम दिता सिख, सिख का मतलब तो शिष्य है, मैं सीखना चाहना, मैं कुछ भी नहीं जानू, कम से कम सच बारे परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानू, मैं जानना चाहना, मैं जानदा बड़ा सूरज चंद तारिया बारे जानदा होवा, मैं जानदा बड़ा शरीर बारे, मैं जानदा बड़ा संसार बारे, कबूल कर ले मैं निरंकार बारे कुछ भी नहीं जानू, कुछ भी नहीं जानू, मैं सच बारे कुछ भी नहीं जानता, मैं जानना चाहना। ये शब्द दिता मेरे पातशाह ने अपनी उम्मत नो, सिख तो सिख, और बड़ा कठिन है सिख होना। सिख कह जना खना कहला सकता है, जन्म तो कोई सिख नहीं, मैनु इतना भी कहण देना, जीवन तो सिख होवे। जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं जे असी कहिंदे आ, जीवन तो ब्राह्मण होंदा है, तो मैनू कहण देना जन्म तो कोई सिख नहीं, जीवन तो सिख होवेगा। सिखी सिखिया गुर विचार, जो गुरु दी विचार मुताबिक नहीं जी रहा कादा सिख है, केड़ी गल दा सिख है। मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता। तो एक समय दी धारा दे युग बदल देना, एक मानसिक मंडल दे युग बदल देना, एक शरीर दे तल ते युग बदल देना, गर्भकाल दी अवस्था, बचपना, जवानी ते बुढ़ेपा, ये चार युग ने। ये युग बड़ा बुढ़ा युग है, पुराना युग हो गया, ते गुस्ताखी माफ, बार बार मेरी उम्र भी इस तरह दी हो गई है, दाड़ा चिट्टा है। बुढ़ा मनुख बहुत चलाक होंदा है, बहुत चलाक होंदा, बड़िया चलाकियां जाना। हैरानगी दी गल, दुनिया के 97% जेडे राजनीतिक ने जेडे हकूमत पे करते ने बुढ़े ने, 97%। जवान उथे तक नहीं पहुंच सकते, सिर्फ 3% जवान पहुंचते ने, 97% बुढ़े पहुंचते ने, क्योंकि जवान इतना चलाक नहीं आता, बुढ़े बड़े चलाक होंगे पहुंच जाते, जवानों की ताकत न पिछे सुट देंगे, चलाक चलाकियां वरतते ने। यह चलाकियां जवान को नहीं आदि, यह भी मैं वो को निरा जोश ही जोश होंगे, कहना खून खोलद खून खोलद, जोश ही जोश होंगे। ये चलाक होंगे ने, इन्हों की जोश की वरतों कर लेंगे ने, गड्डी ओवरहीट हो जाती है, थोड़ी दूर चलती है रह जाते हैं, ये अगे चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं सिंघासना तक, जवान रह जाते हैं। चलाक बुढ़ा बड़ा चलाक होंगे, चलाक न समझाना सिखाना बड़ा औखा है। ये बुढ़ा युग मिले बाबे नानक न, बुढ़िया समझाते रहे और बड़ी मेहनत करनी पई, नौखंड पृथ्वी का भ्रमण करना पाया, किसी अवतारी पुरुष ने इतना भ्रमण नहीं किया, किसी ने इतनी मेहनत नहीं की थी। पर ये बुढ़े इतने चलाक सन, गल ते की मननी, किसी नु तत्ती तवी ते बिठाया, किसी नु पिंजरे च बंद किया, किसी दे बंद बंद कटे ने, किसी नु दीवारां दे चिणे, इते हकीकत है बुढ़ा युग चलाक युग, बड़िया चलाकियां जो है जानदा। तो समय की धारा दे युग बदलते ने, मानसिक तल ते युग बदलते ने, शरीरक तल ते युग बदलते ने। फिर इसका किसी वक्त इस तरह का सतगुरु का वाक आया।

जिस दिन भगती दी मणि इसते मस्तक दे चमके और स्त्री दा मस्तक उस दिन चमकेगा जिस दिन ज्ञान दा प्रकाश ज्ञान दा सूरज उस दे मकसद मस्तक पे जो है चमके पर स्त्री पुरुष दा मेल ए ज्ञान ते भक्ति दा मेल ना होके इते कामना दी मणि ते कामदेव दा मेल होके रह गया। परिवारक रिश्ते ए ज्ञान ते भक्ति दे रिश्ते ना रह गए इते काम देव ते कामना दी मणि। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते ऐसा भी प्रमाण कर देने छले कनक कामनी छले आ गया मनुख देच तोखा खा गया मनुख कामनी तो कनक तो जिंदगी बर्बाद हो गई जीवन भ्रष्ट होके जह रह गया। भक्ति दी मणि चमकनी चाहिदी सी काम मणि चमक रही है काम मणि ज्ञान दा प्रकाश मस्तक ते होना चाहिदा सी काम देव चमक रहे है और ए मिलन अगर काम देव ते कामणी दा होया और जीवन भर ऐसा होया तो इस तो जो औलाद पैदा होवेगी वो कोई ऋषि मुनि दार्शनिक संत भगत ज्ञानी नहीं होवेगी। वो औलाद कैसी होवेगी? धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं

इस दौर दे इस कामी युग दे छम कैयत कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा पुत ते जिन भूत है तेवी जिन भूत है कोई मीरा नहीं पैदा हो रही माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे मजनू पैदा हो रहे क्यों मां बाप शरीरक तल तो उच्च ही नहीं उठ सके दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय ना दे घर औलाद आवे भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया है जिन भूत जो अदृश्य रूप देच पहले कर्म कर दे सन दृश्यमान रूप देच ए मनुख आज कर रहे हैं जिन भूता नु काबू करना औखा सी अजो की अवलाद नु काबू करना औखा है बहुत औखा है कठिन है ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने उस्तादां नू मार रहे ने तरह तरह दे कुकर्म कर रहे ने और किधरे भी सील नहीं संजम नहीं उसका मूल कारण है मां बाप दा जीवन प्रार्थना नहीं बन सकया वासना ही बनिया रहा मां बाप दा जीवन राममई नहीं हो सकया सिर्फ काममई होके रह गया पातशाह कहंदे ने रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज रन्ना होइयां बोधियां स्त्रियां बहुत चंचल दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना यही उना दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी जिथे वेद पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे ची खप के रह गई रूप पेख पेख नारी स्त्री प्रथम अपना रूप वेख दी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है फिर विखाण ले निकल दी है रूप दी प्रदर्शनी शरीर दी प्रदर्शनी और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे रूप नु वेखना ते विखाना यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी पुरख होए सयाद सयाद शब्द फारसी दा है
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਆਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ ਨਾਵਲ, ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਵਿੱਤ ਚੰਚਲ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ, ਇਸੇ ਹੀ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।

ज्ञान कर धर्म वधे नित। रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए, उस सच नूं सत नूं रटन करिए, उस विच मन जोड़िए, धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है। और परोपकार कीते हैं, दान पुन कीते हैं, धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है, उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा, धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे दे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान, ढह ना जान, तूफानी हवावां उन्हां दियां जड़ां ना पुट देन, तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं, किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल, क्षमा दे सहारे, खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है, उच्चा हुंदा है, उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा, धर्म क्रोध कर होत विभंगा। छिन मात्र क्रोध कर दिया, धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन, पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख देंदी है, कितने दिनों की साधना, कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है, बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है, एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को, मुर्दा रोंदी हुई चीखती हुई। डॉक्टर भी हैरान है, जब ये मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब, जदे खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है, रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गया ये ते ठीक है, पर मैं इस वास्ते ले आई है, क्यों मरया है, किवें मरया है, मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नु वेखदा है, अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है, मां नु पुछदा है ए दस किवें गुजरिया, कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी, मेरा दूध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है, खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दूध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नु दूध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी, तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी, बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी, ये बच्चा विचकार रोन लग पया, मैं इसनु दूध पिलाण लग पई।
पर गाली गलो साड़ी चल रही सी। मैं क्रोध नाल उबली हुई सी। तो डॉक्टर ने कहा, ऐ बीवी, तू इस बच्चे नु दूध नहीं पिलाया, जहर पिलाया है। जब तू क्रोध नाल उबली, क्रोध करके तेरिया शरीर दिया ग्रंथियां ने जहर उगलनी शुरू की थी। उन्हां गंडां चो जहर निकली, वो खून विच पिवस्त होई, वो दूध विच लीन होई। तो बच्चे नू जहरीला दूध पिलाया, तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दूध। इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर नू जहरीला कर देंदा है, पर इस तो उल्ट भी हो सकता है। अगर शरीर जहर नाल भर सकता है, खून जहरीला हो सकता है, तो खून अमृतमय हो सकता है, शरीर अमृतमय हो सकता है। परम भगत श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना सत्तर दोए भरे अमृत सरे।

क्यों इतने बेजार, इतने निराश? क्यों देखदा नहीं शील ते संजम ने काम नू मार दिता है, वासना नू मार दिता है। और वो जो सामने खड़ा है ज्ञान, वो जो अपने नाल ले खड़ा है शांति, दूरदृष्टता, इसने खत्म कर दिता है अहंकार। वो देख सामने खड़ा है संतोख, उसने लोभ दे भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ऐसे शक्तिशाली सेनापति जिस राजे दे मारे जान उस दियां ते बावां टुट गईयां, हे क्रोध मैं इस वास्ते उदास बैठा, निराश बैठा, हुण ते हार यकीनी है, हार जावांगे, मर जावांगे, खत्म हो जावांगे। तो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज लिख देने क्रोध हो वाच, उस वक्त क्रोध बोलता है नहीं मोहराजन, उदास होने की लोड़ नहीं, निराश होने की लोड़ नहीं, मैं जो मौजूद हां मैनू भेजो, मैं लड़ांगा, मैं युद्ध करांगा। मोह कहिंदा है जिथे काम मर गया, लोभ खत्म हो गया, अहंकार दे टुकड़े टुकड़े हो गए, तू की करेगा? देखदा नहीं पिया सामने ज्ञान खड़ा है संतोख नू नाल लेके। विवेक राजा अपने नाल शांति दी सेना लई खड़ा है, शील खड़ा है, संयम खड़ा है, दूरदृष्टता खड़ी है, लंबियां निगाहां खड़ियां ने, लंबी सोचनी खड़ी है, की करेगा तू? उत्थे तेरी नहीं चलने। तो क्रोध बोलता है पंडित जी प्रबोध चंद्र नाटक दे इस तरह लिख देने, अंधकरों दृगवंतन को श्रुतवंतन को बदरो कर डारो, धृतवंतन को सो अधीर करो, और चातर की मत दूर निवारो। अंधा कर देंगा जिन्हां दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकनगे किथे खड़े आ, मैनूं भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा, जो लंबियां निगाहां रखदे ने, लंबी नजर रखते ने, दूरदृष्टता रखते ने, ए भी नहीं देख सकने कि किथे खड़े हैं, मैनू भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को श्रुतवंतन को बदरो कर डारो, जिहड़े विचारक ने सूझवान ने पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो, और चातर की मत दूर निवारो, धीरजवान नूं सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होंदा है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नूं इंज लिखे है, चे खुश गुफ्त फिर दोसीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना।

है औरंगजेब। कितना सुंदर लिखे है तेरे हम दीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान दूरदृष्ट है औरंगजेब। चल तू मेरे बोला तो कुछ नहीं सिखया, ना सिखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नू पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। चे खुश गुफ्त तो फिरदौसी है, खुशतर जबां के जोदी बद कार आहिर मना। कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा कम है। तुम बहुत जल्दी की थी क्रोधी, बहुत जल्दबाज आंदा है तू, इसी जल्दबाजी दे प्यो नू कैद कीता, भरावां नू कतल कीता, भैण जहां आरा नू भी जेल दे च पाया। और ऐ औरंगजेब तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमा दी जान ली, सरमद जैसे सूफी फकीर, फिर मेरे मासूम लाडले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत, सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं, पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टता ही नहीं रहेगी, जितना सयाणा होगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातरी की मत दूर निवारो, हित कारज नाए पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नरतं करोत जथा मरकटे, तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ए क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासन अनेक सासन ताड़न्ते जमदूते तव संगे अधमं नरे। जिस दे अंदर तेरा वासा हो जांदा है उसनू जमजूतां दी ताड़ना सारनी पैंदी है, बार बार जमना पैंदा है, मरना पैंदा है। हे क्रोध तव संगे अधमं नरे, अधम गति दे लोग तेरे नाल आउंदे ने, अधम मनुख नीच मनुख तेरे नाल आउंदे ने। क्रोधी महान नहीं हो सकदा, क्रोधी महानीच है, महानीच है। तो फिर इस तों बचाओ किस तरह करिए, इस क्रोध तो किवें बचिए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक सानू इंज उपदेश करदा है। आखरी पंक्ति

0: अकरणं करोत् अखाद्यं खाद्यं असाजं साज समज्जया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञप्त नानक हर नर हरे।
1: धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज दी दित्ती हुई तरतीब विच प्रथम मोह, फिर काम, फिर क्रोध ते फिर ए लोभ। मनुख दियां बुनियादी कमजोरियां विच्चों एक परबल कमजोरी लोभ दी उत्पत्ति होंदी है लैण दी भावना तो। हर वक्त लैण दी भावना अंदर चले, लैणा है लैणा है लैणा है। मैं माता कोलो लैणा है, पिता कोलो लैणा है, भरावां को लैणा है, पत्नी कोलो लैणा है, बच्चियां कोलो लैणा है, पड़ोसी कोलो लैणा है, संसार को लेना है, निरंकार को लेना है, धन लेना है, सुख लेना है, संपदा लेनी है, जस लेना है, प्रभुता लेनी है, मान लेना है, सम्मान लेना है। हर वक्त ए लैण दी बुक, ए लैण दी तरप और ए लैण दी अठे पैर बनी हुई बिरती, बस यही लोभ है। एक ऐसी गंड नु जन्म देंदी है, इसे दा नाम है लोभ। उम्र दे नाल नाल ए लोभ वद्द है, लेन दी बिरती वद्दी है, बड़ी प्रबल वद्दी है। और मनुख प्रबल लोभी हो जाता है। लोभ मनुख नु पाप ते मजबूर करता है। जब लैण दी बिरती ले नहीं सकदी तो अतृप्त लैण दी बिरती ए लोभ खून भी सोचता है, चुराण भी सोचता है। ये सोच पाप है, पर जब ए लैण दी विरती बहुत प्रबल हो जाए, ए सोचनी शिखर ते पहुंच जाए, पाप प्रबल हो जाए, ते जब ए किधरे खो लेंदा है, चुरा लेंदा है, बेईमानी कर लेंदा है, तो ए अपराध बन जाता है। बहुत वड्डी संभावना है लोभी दे अपराधी होण दी। और हमेशा लोभियां तो ही एक दूजे दे धन नो संपदा नो खतरा है। अगर लोभ व्यापक होवे हर एक दे हृदय च और बड़ा प्रबल, तो हर एक दा धन हर एक दी संपदा खतरे दी समझा, किधरे चुरा ली जाएगी, किधरे खो ली जाएगी, किधरे लुट ली जाएगी। लैण दी बिरती लोभ, लोभ दे च खोना लुटेरा, लैण दी बिरती लोभ, लोभ लुटेरा, लोभी लुटेरा हो ही जाएगा। और ये लाजमी सही ढंग नाल, गुप्त ढंग नाल, प्रगट ढंग नाल खोन भी सोचेगा और ये पापी हो जाएगा। देन दी बिरती, मैं देना है किसी नु सुख देना है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਪੁੰਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਨੀ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਚਾਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ। ਪੁਨੀਤ ਕੌਣ? ਦਾਨੀ। ਦਾਨੀ ਕੌਣ? ਪੁਨੀਤ। ਪਾਪੀ ਕੌਣ? ਲੋਭੀ। ਲੋਭੀ ਕੌਣ? ਪਾਪੀ। ਪਾਪ ਲੋਭ, ਪਾਪ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਠਠਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਅੰਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਧਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਸੂਝ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਮਝ ਦੇ ਦਈਏ। ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਨੀਤ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦਾਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਭ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੈਣਾ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨੀ ਲਈ ਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰ ਦਾਨ ਖੜਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ, ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ ਤਾਹੇ ਤੇ ਗੁਰਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭੀ बाजार विच भी व्यापार करता है, लोग भी धर्म मंदिरों विच भी व्यापार करता है, लोग भी इंज कह लो बेचता है धर्म नो, व्यापार करता है, करता है धर्म, फिर कुछ लेन दियां कामनावां नु मुख लग के उसनु बेचता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा बड़ा सुंदर एक वाक, खत्रिया ता धर्म छोड़िया मले छुभाख्या गही, सृष्ट सब एक वरन होई धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इक्को वरन हो गई है, धर्म गति नहीं कर रहा। जिस वरन विच सारी मनुखता आ गई है, इस वरन नाल धर्म नहीं चलता, धर्म की गत रही। अगर मिथ नू लईए ते मनु सिमृति दी वंड नू लईए, उन्हें चार वर्णा दी वंड कीती है, खत्री ब्राह्मण शूद वैस। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही, सारी सृष्टि इक्को वर्ण हो गई, धर्म दी गति रुक गई, धर्म नहीं चल रहा। सारी सृष्टि केड़े वर्ण विच आ गई कि धर्म दा चलना औखा हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मण नाल धर्म चलता है, अगर कोई वाकई ब्राह्मण है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म दा चिंतन करता है, ब्रह्म विच लीन रहिंदा है, ब्रह्म दी सोचदा है, ब्रह्म नू विचारदा है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है, क्योंकि ब्रह्म दा चिंतन करदा है, ब्रह्म प्राप्त होवे ऐसा सोचदा है, ब्रह्म नाल जुड़ा ध्यान जोड़दा है, ब्रह्म बारे सोचदा है विचारदा है। तो ये ते ब्राह्मण होया, ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है। ब्राह्मण किसे वेशभूषा दा नाम नहीं, ब्राह्मण किसे जात दा नाम नहीं, ब्राह्मण एक मनोवृत्ति। जो ब्रह्म दा चिंतन करे, ब्रह्म नू सोचे, ब्रह्म नू विचारे, ब्रह्म दी प्राप्ति दी कोशिश करे, ब्रह्म दे लीन होण दी कोशिश करे, ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण नाल ते धर्म चलदा है। कदी कदाई कोई लखां इस तरह दा पुरुष जिन्हों देख के कह सकी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इति ब्रह्म विचलीन है, इति ब्रह्म दा चिंतन कर रहे है। तो ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है, खत्री नाल भी धर्म चलदा है। खत्री कौन? खत्री सो जो कर्मा का सूर, जिसदे स्वभाव दे सूरवीरता है, जिसदे विचारां दे सूरवीरता है, जिदी सोचनी दे सूरवीरता है, जिसदा खून अन्याय वेख के खौलन लग पैंदा है, जिसदा खून मजलूम दा खून बन जांदा है, वो अपना खून मजलूम नू देंदा है, मजलूम दी रक्षा लई जिसदा खून उछलदा है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। कौन है सूरबीर? जो दीन दी खातर लड़ता है, दीन कमजोर। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे, दीन गरीब निमाणा निताणा। जो दीन दी बाह पकड़ लवे इति परमात्मा वाला गुण है, इति ईश्वरी स्वभाव है, इति स्वभाव ही ईश्वरी है। दीन दे पक्ष देश खड़ा हो जाए, ताकतवर दे पक्ष देश ते सारी दुनिया खड़ा होंदी है, शक्तिशाली मनुख दे पक्ष देश ते सारे ही आ जांदे। कमजोर दा पक्ष कोई कमजोर नहीं ले सकदा, कोई सूरबीर ले सकदा। तो सूरबीर दे नाल धर्म चलदा है, क्यों? सूरबीर ते कमजोर दी रक्षा दी खातर अपनी जान भी दे देंदा है। देखदे हां असीं इतिहास नूं, सूरबीर किस नूं कहिंदे ने? कमजोर दा पक लवे। कश्मीर दा ब्राह्मण कमजोर सी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने बांह पकड़ ली, ब्राह्मणा दियां गर्दना बच गईयां, क्योंकि किसे बहादुर ने अपनी गर्दन चांदनी चौंक दे कटवा दित्ती। ब्राह्मणा दे मस्तक दे चमक दे हुए तिलक लिलाट कर उठे, चमकन लग पे, क्योंकि किसे ने अपना खून चांदनी चौंक दे डोल दिता। बच गई ब्राह्मण दी जनेऊ दी डोरी, क्योंकि किसे ने इसी डोरी दी रक्षा ली अपने प्राणा दी डोरी तोड़ दित्ती। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, महादानी महादानी। जो कमजोर दे पक्ष दे खड़ा हो जाए ते कुर्बान हो जाए, सूरबीरता बहादुरी बड़ी बहादुरी। तो क्षत्री नाल धर्म चलदा है, उदा ते स्वभाव परमात्मा वर्गा हुंदा है। वो ते दीन दा पक्ष लैंदा है, गरीब दा पक्ष लैंदा है। परमात्मा नूं गरीब निवाज आख्या गया है, दीना दी रक्षा करन वाला आख्या गया है। तो ये स्वभाव जिस मनुख दे अंदर पैदा हो जांदा है वो ते परमात्मा वर्गा है, वो ते ईश्वर वर्गा है। तो खत्री दे नाल धर्म चलदा है। शूदर ए वरन अपने आप विच खास वरन है। इस वरन दा मनुख, इस स्वभाव दा मनुख बोझल भारी सेवा करके अध्यात्मक खुशी मानदा है। किसे दे कपड़े धो के, किसे नु पानी पिला के, किसे थके हुए दी मुठी चापी करके, झूठे भांडे मांज के, धर्म सथलों दे तप्पड़ झाड़ के, बुहारी दे के, या धर्म मंदरा नू बनान दे च टोकरी चुकनी, पत्थर चुकने, इट्टा चुकनिया, ये भारी खुशी प्राप्त करदा है भारी भरकम सेवा करके, बोझल सेवा करके। सफाई करनी है किसी दे घर दी, रस्ते दी, साफ करने ने किसे दे कपड़े, किसे नु इशनान कराना है, किसे मरीज दी तीमारदारी करनी है, किसे दे कपड़े धोने ने, भारी सेवा करनी है, भरकम सेवा करनी है। और इस सेवा विच उनु रूहानी खुशी मिले, इस सेवा करके इस तरह जुड़े जिमें कोई ब्रह्म दा चिंतन करन वाला ब्राह्मण जुड़दा है, जिमें कोई कमजोर दी बां पकड़न वाला खत्री प्रभु नाल जुड़दा है। इस तरह ही भारी सेवा करके, बोझल सेवा करके अध्यात्म खुशी मानन वाला प्रभु नाल जुड़दा है, शूदर कहलांदा है। तो शूदर दे नाल धर्म चलदा है। इस तरह दी बोझल सेवा करन वाले मनुखां नूं शायद ब्रह्म दा चिंतन रूहानी खुशी नहीं देंदा, ते चिंतन करना उन्हां दे वस दी गल भी नहीं, इतनी शक्ति भी नहीं। खून दे चितना उछाल उबाल ए भी नहीं कि कमजोर दी खातर लड़े, उहदे पक्ष दे खड़ा होए, पर हर एक दी सेवा कर सकदा है। धर्म मंदरां दी सेवा कर सकदा है, धार्मिक मनुखां दी सेवा कर सकदा है, मरीजां दी सेवा कर सकदा है और बड़ी बोझल सेवा कर सकदा है, भारी सेवा कर सकदा है। इस तरह दे शूदर दे नाल उस दी सेवा दे सिदके उहदे नाल परमात्मा चलदा है, ईश्वर चलदा है। शूदर कोल परमात्मा बैठदा है, शूदर दे नाल परमात्मा चलदा है, शूदर दे अंग संग होंदा है परमात्मा। तो शूदर दे नाल धर्म चलदा है, खत्री दे नाल धर्म चलदा है, ब्राह्मण दे नाल धर्म चलदा है, ऐसा केड़ा वर्ण है जिस बारे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इक्को वर्ण दी हो गई है, इक्को वर्ण विच आ गई है, धर्म नहीं चल रहा। अजोकी मनुखता दे नाल राजनीति चल रही है, कारोबार चल रहा है, परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा। बाकी तो सब कुछ चल रहा है मनुख नाल, लेकिन धर्म नहीं चल रहा तो खत्म हो गए ब्राह्मण, कोई टामा टामा, खत्म हो गए खत्री, कोई विरला, खत्म हो गए शूदर, कोई एक कद, भर गई पृथ्वी वैशानार वैश, सारी सृष्टि वैश हो गई। वैश केवल सौदेबाजी जानता है, वैश हर वक्त बाजार दे चाहे, वो जद बाजार दे चाहे तो बाजार दे चाहे, पर वो जद मंदिर दे चाहे तां भी बाजार दे चाहे, जद वो परिवार विच बैठा है तां भी बाजार दे चाहे, पर जद वो गुरुद्वारे बैठा है तां भी बाजार दे चाहे। वैश वेचना है, वेचना है, वेचना है, छोटा मोटा साजो समान या वड्डा साजो समान वेच के जो अपनी उपजीविका चलांदे ने, ये वैश नहीं, इते किरत है, इते धंधा है। वैश बेचनी है अपनी इज्जत अगर मुल मिले, वेचना है अपना ईमान अगर पूरा मिल मिले, पूरी कीमत मिले। बेचना है देश, बेचनी है कौम अगर पूरा मुल मिले। जो बेचण दी सोचदा रहिंदा है वो वैश है, और जो बेच देण दे सफल हो जांदा है वो सफल वैश है। वैश दे नाल धर्म चलदा नहीं, क्योंकि वैश ते धर्म नूं भी बेचदा है। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। ठीक है शायर दा तखयल, खुदा ते वैश दे हाथ च नहीं आएगा, पर जे किधरे आ जाए ते वैश ने खुदा दी भी बोली लानी है, उसने भी बेचना है। वैश लोभी आंदा है, लोभी पापी होंदा है, वैश लोभी होंदा है, लोभी पुनीत नहीं होंदा, वैश लोभी होंदा है, लोभी सब कुछ बेचना चाहता है, बदले विच दुगना तिगना लेना चाहता है, मुल मिले कौम बेचनी है, इज्जत बेचनी है, असमत बेचनी है, ईमान बेचना है, धर्म बेचना है, सब कुछ बेचना है। वैश शब्द ते उर्दू फारसी दा बाजार विच बैठ के जिहड़ी स्त्री अपनी असमत बेच दी है उहदे लई शब्द है वैश्या। वैश्या सिर्फ असमत बेच दी है, और वाकई असमत बिक गई तो सब कुछ बिक जाता है। कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देंदा है, कोई अपनी असमत बेच के सब कुछ बेच देंदी है। इसनु मैं फिर दोहरावा, कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देंदा है, कोई असमत बेच के अपना सब कुछ बेच देंदी है। वैश वैशिया दोवें निकट ने, एको ही सिंघासन ते बैठने। कला बेचनी है, ज्ञान बेचना है, धर्म बेचना है, ईमान बेचना है, कथा बेचनी है, कीर्तन बेचना है। समा लंघ गया जब नजराने हैं, पेट आंदे सन, पेटा आंदी सी, नहीं मुल चाहिदा है। तो जब मुल चाहिदा है तो ज्ञान बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कीर्तन बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कथा बिक गई, जब मुल चाहिदा है तो धर्म बिक गया, सेवा बिक गई, ईमान बिक गया। मुल चाहिदा है, और जिसनु वड्डा मुल चाहिदा है, बेच देगा इज्जत, बेच देगा असमत, बेच देगा शराफत, बेच देगा अपना विश्वास, सब कुछ बेचेगा। वैश नाल धर्म नहीं चलता। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अफसोस नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, सारी सृष्टि इंज कह लो बहु गिणती दे वैश हो गई है, धर्म व्यापक पद्धर ते नहीं चल रहा। ओया किसी एक कद मनुख नाल चल रहा है, हजारां च लखां च कोई एक कद, तो ये कोई बहुत गिणती नहीं। सारा संसार लोभी हो गया है, लोभी धार्मिक नहीं हो सकता, लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी पापी हो सकता है, पुनीत नहीं हो सकता, दानी पुनीत हो सकता है, लोभी पुनीत नहीं हो सकता। लोभी ते पापी है, दानी पुनीत है, लोभी पापी है। तो पाप व्यापक हो गया, पाप छा गया, पाप ग्रासी पृथ्वी, धौल खड़ा धर हेठ पुकारा। जब पापियां नाल धरती भर जाती है, भाव लोभियां नाल भर जाती है, तो एक दफा ते जमीन दे जर्रे भी पुकार उठते ने, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, पापी ही पापी, पापी ही पापी। सब कुछ बेचण ले तैयार ने, और सब कुछ खरीदण दे खरीदार भी मौजूद ने। बाजार बन गया सारा संसार, बाजार बन गए मंदिर, बाजार बन गए धर्म सतल, बाजार बन गए तीरथ। सनातन मत दा सिरमौर तीरथ बनारस शिवा ने वसाई सी, एक महान योगी ने, एक महान तपीश्वर ने। तपीश्वर पैदा होवन, संत पैदा होवन, जोगी पैदा होवन, ध्यानी पैदा होवन, ज्ञानी पैदा होवन, ये नगरी वसाई। पर इस नगरी विच लोभी आ गए, लोभी जिथे कठे हो जान, लोभी लंपट आंदा है, ठग आंदा है। लोभी दे अंदर अनेकां लहरां चल दियां ने लैण दियां, लिहाजा लोभी हर पासे लंपट पड़ा फैलांदा है। तदी ते मेरे पातशाह ने कहा, हे लोभा लंपट संग सिर मोरे, अनकलेरी कलोलते। लोभी स्वयं भ्रष्ट होंदा है, सब कुछ नु भ्रष्ट करके रख देंदा है। लोभी तीर्थां नु मंदिरां नु बाजार बना के रख देंदा है, और बाजार विच ते ठगी चलदी है। बाजार ते ठगी दा चोली دامن دا جو ہے ساتھ ہے، یہ لوبھ اس دے کارن کر کے جیب پتہ نہیں کتنی تھاواں تے بھرمدا ہے، بھٹکدا ہے، اور اس دا من ڈولدا ہے اور ہر جگہ نو برشٹ کردا ہے، ہر وقت لین دی برتی لین دی برتی لین دی برتی، لوبھی دے نال ہر وقت بازار چلدا ہے، بازار وچ منک کچھ لین لئی جاندا ہے، لیکن لوبھی نو ایسا بازار چاہیدا ہے، لینا تے سب کچھ ہے اور سب دے کولو لینا ہے، بدلے دے دینا کچھ بھی نہیں، ایسا بازار چاہیدا ہے۔ اس طرح دا بازار لوبھی ہر وقت اپنی کلپنا دی دنیا وچ بنائی رکھدا ہے، لہذا لوبھی دے نال ہی بازار جاندا ہے، لوبھی جتھے بیٹھا ہے اتھے ہی بازار ہے، چاہے وہ ہری مندر بیٹھا ہے، چاہے گردوارے بیٹھا ہے، چاہے خانہ کعبہ دچ بیٹھا ہے، چاہے چرچ دچ بیٹھا ہے، لوبھی تاں بازار دچ بیٹھا ہے، وہ کدھرے مندر دچ نہیں بیٹھا، وہ کدھرے گردوارے نہیں بیٹھا، کدھرے چرچ تے مسجد دچ نہیں بیٹھا، لوبھی جتھے بھی بیٹھا ہے بازار دچ بیٹھا ہے، لوبھی جدھر چلدا ہے بازار نال چلدا ہے، لوبھی جدھر چلدا ہے ٹھگیاں اس دے نال ہی جو ہے چلدیاں نے۔ پھر سدگرو دیو جی مہاراج اس پاون پوتر سلوک دے انج فرمان کردے نے،

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र देवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नू बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्व देव मानुख पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे। ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है, लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है, ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वह गुणा का सागर है, मनुख औगुणा का सागर है। परमात्मा के गुण नहीं गिने जाते, मनुख दे औगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे। उंज ते अनंत औगुण ने, अनंत औगुण ने, पर मूल कमजोरियां मूल औगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणित दिच लियाया जांदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहने ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणां विच बदलना है। सतगुरु मोह तो आरंभ करदे ने, मोह मेरा, मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नूं कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनू थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा, मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है, लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पिया है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। व्यक्ति जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है, लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसी टूटण का दुख है, इसी टूटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनू पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करदा है उतना ही मोह वध जांदा है, और जितना मोह वध जांदा है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चल रहा है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चल रहा है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आंदा है मेरा है, मेरा है, मेरा है, उतना ही मोह वध जांदा है, उतनी ही पकड़ वध जांदी है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है, जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है। बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन 5-6 वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पईयां वगांदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा विच बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस विच मोह सी, बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
bima benda gaya. Kyon? Kehnde ne sama sab kuch nu paat denda hai. Sama zakhma nu bhar denda hai. Bahut sama lang gaya. Aaj 5 saal ho gaye. Us bacche nu gum hoya. Achanak aaj kise ne dar pe dastak diti. और उसने आके आखिया थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखया जिस हार भी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसते गल दे च है आके देखो खैर कुछ हो लिया हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया मां ने अखां विच बिठाया विछोड़ा मिलाप दे सुख देच बदलया हंजू हास्यां देच बदले मुरझाना खेड़े देच बदलया दुख ਸੁਖ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਡੋਲੀ ਪਿਓ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਨੋ ਸਾਗਰ ਉਮੜਾ ਦਿੱਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ पालन पोषण इस तरह चल रहा है दिन लंघ दे गए बच्चा बहुत खुश उसने इतनी ममता मिल रही है इतना प्यार मिल रहा है वो भी खेड़े च वो भी खुशी च मानो बच्चा मिल गया प्यो नु पुत्र मिल गया उन्हां दी भी प्रसन्नता पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दिती आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आयो ए थोड़ा नहीं थोड़ा बच्चा ते मैं वेखे है वो होर है इस बच्चे ने उसे ही बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है आओ थानु दिखाइए जद जाके मां ने वेख्या प्यो ने वेख्या हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी आवाज मेल खांदी सी चाल ढाल मेल खांदी सी मां ने सीने चलाया प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी कर ले आए नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां पहले ले आंदे तो नजरां फिर गईयां हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी धारा मोह दी बदल गई दूसरे बच्चे दे टिक गई सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लेंदे बच्चे देते डुलन लग पी पहला मायूस रहन लग पया दुखी रहन लग पया जैसे बूटे नु पानी ना देओ कुमलान लग पेंदा है मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया प्यार तो वांझा रह गया सत्कार तो वांझा रह गया कुमलान लग पया दूजा खिड़न लग पया वधन लग पया प्रफुल्लत होण लग पया पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया इतना मुरझा गया मुरझा के टूट गया मिट गया सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौं गया हमेशा दी नींद सौं गया
اس بچے نو مردہ ویکھ کے نہ ماں دی اکھاں چ ہنجو نہ پتا دے منہ چ ہوکے بس سسکار کرائے. کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی سنتاپ نہیں. کیوں؟ اس نال مو نہیں. مو کیوں نہیں؟ میرا نہیں, میرے نال مو ہوندا ہے. جو میرا نہیں اس نال کادا مو. لیکن داس سسکار کر کے گھر واپس ہی آئے نے, ایک سجن نے آ کے دسیا, مترو جس طرح داس سسکار کر کے آئے ہو وہی تھوڑا بچہ سی, جس نو لے کے آئے ہو یہ نہیں ہے تھوڑا. ثبوت مہیا کر دیتے. تہائیاں مار کے رو اٹھی ماں, چیخاں نکل گئیاں پتا دیاں, سارا گھر غماں دا ساگر بن گیا, مرگڑ گھاٹ بن گیا. ہن جس گھر دے چ خوشیاں دے پھل کھڑے ہوئے سن, ہن دکھاں دے کنڈیاں تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہن جتھے خوشی دی روشنی سی, ہن دکھاں دے ہنیریاں تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ماں اپنے کیس پٹ دیے, پتا اپنا سر دیوار نال ماردا ہے. سڈے بگیچے دا پھل مرجھا گیا, اتے میرا سی مرجھا گیا, اتے میرا سی ٹوٹ گیا, اتے میرا سی جاندا رہا. تو دکھ میرے دا ہے, ورنہ لڑکا تک سامنے کھڑا ہے یہ میرا نہیں. اس نال مو بھی ٹوٹ گیا. اس ادارن نال سپشٹ ہو گیا جو میرا ہے اس وچ مو ہے, اور جس وچ مو ہے چھوٹی جی خراش بھی برداشت نہیں ہوے گی. پر جس وچ مو نہیں, جو میرا نہیں, ریزا ریزا ہو جائے ٹوٹ کے, تاں بھی کوئی دکھ نہیں, تاں بھی کوئی سنتاپ نہیں. سنتاپ مو دکھ یہ سارے اتھے کٹھے ہو جاندے نے جتھے میرے بھی مور لگدی ہے. میرا گھر, میری کل, میری عزت, میری مان مریادا, میری دھن سمپدا. تو جو میرا نہیں اس نال مو نہیں. دراصل منک نے میرے بھی مور متھیا تے لائی ہے. اے میرے دی مور سچ تے نہیں لا سکیا. واقعی جس نو کہہ سکدا ہے یہ پربھو میرا ہے, یہ پرماتما میرا ہے, اور وہ میرا ایسا ہے کہ ساری کائنات بھی اس نو واقعی میرا ہے, میرا ہے. تاں وی وہ بددا نہیں, گھٹدا نہیں, سب دے حصے یکساں آندا ہے, اکو جہا آندا ہے. لیکن مو ایک ایسا پردہ, میرا ایک ایسا اگیان, جس کارن کر کے یہ متھیا نو تے گل نال لاندا ہے, سچ تو کوسوں دور بھجدا ہے. اور اس طرح زندگی مو دے دلدل وچ پھس کے رہ جاندی ہے, مو دے کھو دے وچ ڈب کے رہ جاندی ہے. اور اے میرے دا وستار صرف منکھاں تک ہی نہیں کہ میرا بھرا, میری ماں, میرا پتا, میری پتنی, میرے بچے, اگاں چل کے اے مو سمپتا تے ہو جاندا ہے, دھن تے ہو جاندا ہے. موجودہ دور دے کچھ منکھاں تے وشواس گھٹدا جا رہا ہے. منکھ دی منک نال پکڑ کٹتی جا رہی ہے, منک سیاح ہوں جا رہا ہے, چنچل ہوں جا رہا ہے, بودھک ہوں جا رہا ہے. اور جتنا بودھک ہوں جا رہا ہے
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਲੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤੋ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਧਨ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਵਰਤੀਏ ਧਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਧਨ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਗੜ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ, ਕੁਲ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਕੜ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਪਕੜ। ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਗੇੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਸ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ। ਸਿਆਣੇ ਤੈਰਾਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
और जब सारे निकल जाते ने प्राण तो यह भी घूमण के रिचा निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमण घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमण घेरी चो निकलिया है फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आखे है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जाता है, इसी ची मनुख तड़प के रह जाता है। और निकलना जींदे जी उस लई औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दिती है, इथों ही मनुख दियां मूल कमजोरियां दा जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही कैसा चक्कर है, यही कैसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़दा नहीं, मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड़ रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तू याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ये मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणा दे निकलन तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते ने, बड़े सूरबीर ने, मोह नू जित लिया, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लैंदा है, मोह नू जित लैंदा है, प्रभु उसनू गलवकड़ी च लैंदा है, और जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है।

अत बलना बहु मर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक, देवते मानुख चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख, गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां भी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखण वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर, गण गंधर्व संगीतकार, सारे इसकी लपेट दे चले, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा, मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत हो गए, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरा खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनू भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदियां वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दे डुबी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़िया दे चिलिपटे आया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद देच है। हैरान होके अकबर कहता है, ए बच्चा किसका बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनू ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चा गई, पकड़ दे चा गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगुणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उस नू चंगे नहीं लगदे। अपना करोप बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करोप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभु दी शरण प्रकट प्रभु दा चिंतन कर नाम दे गीत गांदियां गांदियां मोह दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जांदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी दे सारे का सारा पराया इतना वड्डा जगत ते ओपरा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय दे च जीवेगा डर दे च जीवेगा दुख दे च जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख दे च ते भय दे च जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साढ़े देश दे एक ऐसा भी पुरुष होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखिया सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चल रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासक वार्ता है एक ऋषि ने जब ये नाम सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया है राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रस्त है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखिया जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख

लगने, और संस्कारा वे प्रलोभ वश होके संजोग वश होके इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि, ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, लेकिन रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गया, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है, चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखिए गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा, राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर। राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा, दसोरा राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है, राजन तुमको अति विपत, पल पल घड़ी घड़ी

स्थले पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोले। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी कीता है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसते आया कहिंदा है, तपिया तप क्यों छाड़े हो,

ये कोई नवी गलती नहीं है, पर मैनू दुख है, अफसोस है, ए ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया, इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल ए गल राजे निर्मम दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन, उतना ही कठिन, उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है, सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, और सिखा नू नहीं कहंदे किधरे, इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता है। और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं तू ही पूरी कर सकता है, हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं पूरी गल सुन, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा, स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने, शहादत दा जाम पींदे आया दोवें लखते जिगरां नू देखदे ने, शुक्र करदे ने परमात्मा दा, ईश्वर दा, अकाल पुरख दा, असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना ताज दा मो, ना तहत दा मो, ना परिवार दा मो, ना संसार दा मो, केवल प्रेम अकाल पुरख दा, प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है, और प्रेम ईश्वर का रूप है, जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति, और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, मोह सीमित है प्रेम असीम है।
संसार भी सीम है, मोग रसेदी भी सीम है, निरंकार असीम है, प्रेमी असीम है। जैसे कोई तरह तरह प्रभु की शरण विच जांदा है, आसरा पकड़ता है, अरजोई करता है, अरदास करता है और उसकी याद विच डुबदा है, मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ गया, ना हरक ना सोग, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम।

जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू तू है तू है तू है। इस वृत्ति ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां मैं हां मैं हां ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम देच जिदियां सारियां क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित भगवती नुमाइश हो रही है। परमात्मा ही प्रकट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही जद मैं सी तू नहीं सी हुण तू है मैं नहीं। ए तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान हौमें नावें नाल विरोध है दोए न वसे इक ठाए। ए मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते। या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां। उदी सारी भज दौड़ उदी सारी किरिया उदी सारी तपस्या उदी सारी मेहनत ये किस कारण हो रही है। मैं पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आश्रित है। तू ही है तू ही है तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम दा कहना है अज राह चनार अज राह चुनार कि सलामत न कुनत। इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनत। खलकत देच इस ढंग नाल रहे कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा दर पेश ना खुआनंद ओ इमामद न कुनत। जे किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके निमाज पढ़ी किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और निमाज पढ़दियां मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे च भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिस दा मिट गया है सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले। पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहिंदे ना गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहुंदा है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार
एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नू भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जांदा है।

झिकते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहुंदा है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहण विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसदे दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने,

0: नारद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमार आरद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जितो खुदा दा मिलाप चाहना है जी किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है इसनों आज ही जड़ों पुट दे सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नूं जड़ चेतन सब नूं अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारियां नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसती है एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब बात। जद उस एक नूं सज्जन बना लैंदा ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है। जीवन धन हो जांदा है कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे चवो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया है दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको उम्मीद हम आपन की ना पर ए युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदी। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर वो धार्मिक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल दे कुटिया बना साधना दे लीन है ते साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सरा साधना विच लीन ए योगी ए संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपेश्वर है बहुत जपेश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। भावें साधु कहण लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड दिता है असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण करदे हां। पर वह राजा कहण लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आप दे दर्शन करा ये नजराना है ये भेंट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नो। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र गूढ़ा मित्र बचपन दा दोस्त और वो भी साधु सी वो भी तपस्या कर रहा सी मिलन लई आया है। लालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो भिक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया है। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदे बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई तीन घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नु कहिंदा है भी इत्थे कल्यां बैठिया तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो, मैं तीन घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जांदे हैं। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत, वो कट के दिता और आखे ए पा लो, कस्बे दे चलिया तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियास, ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख, हरक सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवे कस्बे दे अंदर दाखल होंदे ने सारियां दी निगाहां उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे दे आउंदा सी सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने, अज ते मेरे मित्र ते, चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है, हैं इते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेख देने, खैर जिस घर दे जाना सी गए, आओ भगत होई, सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछया उस बैरागी साधु तो, ए जो नाल आए ने ये कौन ने, क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनु वेख रहे ने, सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलक दी है, निर्माणता बिखर दी है, रहस बिस्माद अखां दे इच है, तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने, पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने। दुखत होके कहिंदा है मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन दे दोस्त ने, साधु ने, साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर जद उस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दे। खैर माफी मंगन लग पया, कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ, दूसरे घर गए। दूसरे घर वालों की भी निगाह इस साधु ते अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे ते शांति है। और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला, तो दूसरे घर वालों ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने। तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या कर देने ज्ञानी ने, रह गई इस चोले दी गल। ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे विच ही वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे है, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। स्वाभाविक पूछ रहे है, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने। तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया, जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, एले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र दा भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु दी महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने ते उनां नु पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनु भी हंकारी छुपाण दी कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज दी बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी। ये बड़े बुरे पुरुष आउंदे ने हंकारी, गुरु नूं भी छुपांदे ने, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? तो ये मित्र नूं छुपांदे ने, पुत्र नूं छुपांदे ने, अगर गुणवान है मां बाप नूं पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नूं ही अग्गे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटण दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नूं भी नहीं मन सकदा, अहंकार जीवदा है मैं आश्रित तू ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नू अग्गे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं। इसे नू आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है।
1: فخر بکرے نے کیا، بس میرے سوا کوئی نہیں۔

0: के गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वट दिता।
0: गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते

दुख सुख बहु भोगणे, अह अहंकार तेरे करके ए जीव जम देने मर देने आम देने जान देने दुख भोग देने सुख भोग देने थक जान देने टूट जान देने। ए अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं।

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पारब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लभनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जे किधरे अंदरों निकले तू इतनी औषधि हो गई। मैं इत रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है। जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर

ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਤਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਦੋਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਅਸਹਿ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵੇ? ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੇ ਦਰੀਆ ਤਖਤਾ ਬਦਮ ਕਰਦਾ ਅਮੀ, ਬਾਜ਼ ਨੀ ਗੋਇਨ ਕੇ ਦਾਮਨ ਤਰਮਕੁਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਾਸ। ਤੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬ ਨਾ, ਭਿੱਜੀ ਨਾ, ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵਾਂ? ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਲੀ। ਤੇ ਕਲਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਵੈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਲ। ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੀ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਕਲਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇੰਜ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
इस भाईचारे नू बड़े सन्मान नाल सिख जगत दे आदकाल तो देखिया जा रहा है और अज भी असी चौथी दे धार्मिक मनुख नू भाई साहब करके बुलांदे हां। मरदाने नू सतगुर भाई साहब करके बुलांदे ने, जद भाईचारा है इतनी नेड़ता है तो नेड़ता दे कोई राज नहीं होंदे। कहिंदे ने मनुख उत्थे छुपा के रखना चाहुंदा है, चादर पर्दा पाना चाहुंदा है, जिथे कुछ ओपरा पाना है। छुपाना ही इस गल दा सबूत है, जो कुछ भी सामने है सब बेगाना है, सब ओपरा है। हर मनुख अपने अपने पर्दे चुकी फिरदा है और हर मनुख बुरके देच है। किधरे किधरे ये अपना बुरका उतारदा है, जब देखदा है अपना है, ये अपना घर है, ये अपने ने, इन्हां नू मेरी असलियत दा पता है और मेरे नंगेज दा भी पता है, की ढकना इत्थे की ढकना। लेकिन आम बेगानिया तो मनुख नू पर्दा करना पैंदा है। पर्दा इस गल दा सबूत है, बुरका इस गल दा सबूत है, कुछ सामने ओपरा है, बेगाना है। भैन भरा दे सामने बुरका नहीं करदी, मां पुत दे सामने बुरका नहीं करदी, अपना है, ये ते अपना है। अगर मनुख कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो इसका छुपाना ही इस गल का सबूत है, सामने ओपरा है, सामने कोई बेगाना है। अपने दे सामने ते मनुख सब कुछ उघाड़ के रख देता है, उदा जी करता है अपना सीना भी चीर के इहदे अगों रख दे। लेकिन बेगाने दे प्रति ते बड़ा सावधान आउंदा है, किधरे इसदियां नजरां मेरे सीने तक ना पहुंचन, ये किधरे मेरे अंदर झात ना मारे। तो जिथे भाईचारा बन जाए उथे सब कुछ खोल के रख दिता जांदा है, और जिथे पर्दा पाना पए दो गल्लां हो सकदियां ने, या ते सामने सारे बेगाने ने ओपरे ने, और जिस ते पर्दा पाया जा रहा है कोई चंगा भी नहीं होवेगा। हमेशा जख्मां ते पट्टी बनन दी लोड़ पैंदी है, हमेशा शरीर दा दागी थां छुपाना पैंदा है, हमेशा शरीर दे अपंग हिस्से नूं ही ढकना पैंदा है, छुपाना पैंदा है, दूसरे तों लुकाना पैंदा है। जो कुछ भी लुकाना चाहुंदे आं, छुपाना चाहुंदे आं, इतनी गल ते स्पष्ट है ठीक नहीं होवेगा। गंदगी नूं ढकण दी लोड़ है, बिष्टां नूं ढकण दी लोड़ है, फुल्लां दे उत्ते चादर पाण दी कोई लोड़ नहीं। नगनता निर्दोषता दा सबूत है, निर्दोष है, नगन है, नगन है, निर्दोष है, गुनाहगार है, ढकिया होया है, और ढकिया होना इस गल दा सबूत है, गुनाहगार है। गुनाह नूं ढकना पैंदा है। एक मासूम बच्चे दा जन्म होया है, नंगा है, पर इस दी नगनता दे नंगेजपणा नहीं है। इसका नंगा शरीर लोभ दी प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर वासना दी प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर काम दी प्रदर्शनी नहीं कर रहा, जबकि कईयां दे ढके हुए शरीर भी प्रदर्शनी करते हैं। गंदगी ते चादर पाई है, चादर दे चों भी बदबू बाहर आ गई है, चादर दे चों भी गंद बाहर आ गई है। तो ये दौर, ये समा, इस नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कलाल, और ये शब्द उच्चारण कर रहे ने मरदाने दे प्रति। मरदाने दे सामने इस युग दी नगनता सतगुर पेश कर रहे ने, हालांकि युग ने अपने आप नूं ढकया है, बहुत ढके है, बड़ा ढके है। एक जमाना ते ऐसा भी साडे देश दे लंघे है कि असी धार्मिक पुरुषां दियां मूर्तियां भी नगन बनाईयां, धार्मिक मंदरां दे च भी नगन मूर्तियां बनाईयां, और बड़े बड़े साधुआं दे टोले भी चले, नांगे साधु, नंगे साधु। साधु होण दी पहचान नंगा है, इहदे कोल ढकण वास्ते कुछ भी नहीं।
ढकण वास्ते कुछ नहीं, इस दा मतलब नहीं कि इहदे कोल कपड़े नहीं ने। नहीं, ऐसी कोई गंदगी इसके कोल नहीं जिस नूं इह ढके। फुल नंगे ही ठीक रहिंदे ने, पर जैसे जैसे मनुख दे छिद्र वधदे गए, जख्म वधदे गए, पट्टियां भी वधदियां गईयां, और जब सारा ही शरीर जख्मी हो गया तो सारा शरीर पट्टियां नाल भर गया। कपड़े नहीं पहने हुए, जख्मां दे उत्ते पट्टियां बनियां होईयां ने। हकीकत ए है, हमां तन दाग दार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। ये सूफी संत कहिंदा है, रोम रोम जख्मी है, किथे किथे मैं पुंबा रखा ते पट्टी बन्ना, ते जे मैं पट्टियां इतनियां बना रोम रोम दे उत्ते, ते पट्टियां ते मेरा लिबास बन जाणगियां, पट्टियां मेरा पहरावा बन जाणगियां। गुनाह नूं ढकण लई जो कपड़े पहने, वो कपड़े लिबास बन गए, वो कपड़े फैशन बन गए, वो कपड़े समाज दा अंग बन गए। वरना गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, इह अहसास पशुआं च नहीं पैदा होया, विस्माद नांगे फिरे जंत। महाराज कहिंदे ने, मैं ते विस्माद हो जांदा, पशु नंगे ही घूम रहे ने, इन्हां दी नग्नता लोभ दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नग्नता हंकार दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नग्नता वासना दी प्रदर्शनी नहीं करदी। मनुखता दे आदकाल दे मनुख जद निर्दोष सी, इतना ही निर्दोष जैसे कि पशु ते पक्षी ने, कपड़ियां दी लोड़ नहीं सी। दोष वद्दे गए, कपड़े वद्दे गए, सहजे सहजे समाज दा हिस्सा बन गए कपड़े। जो कपड़े पहन रहे है भले मानस है, निर्दोष है, हुण नंगा दोषी कहलाण लग पे है। इस वास्ते दोषी मनुख नूं असीं कह देने आ, बड़ा नंगा मनुख है, ये ते बड़ा नंगा है। कमाल दी गल, एक दौर ऐसा लंघिया, ये ते बहुत गुनाहगार है, सब कुछ ढक के रखे है, ढकिया होया है, परिभाषा बदल गई, ये ते बहुत नंगा है, ये ते बहुत नंगा है। वक्त दा तकाजा, समय दा प्रभाव। तो ये शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाने दे प्रति उच्चारण कीता है। कल कल वाली काम मद मनुवा पेवन हार। एक कल आम पर चलता है, शराबो कबाब, कबाब नाल शराब जुड़ गई, शराब नाल कबाब जुड़ गया। ऐसा क्यों? शराब और हलवा इंज नहीं कहंदे, शराब और मिठाई ऐसा नहीं कहंदे, शराब और रोटी ऐसा नहीं कहंदे, शराब और अंब ऐसा नहीं कहंदे, शराब और कबाब। लगदा है कुछ जरूर चोली दामन दा साथ है, अगर साथ ना होंदा तो इस तरह भी कहा जा सकदे, शराब और दुध, शराब और दही, शराब और घी ऐसा नहीं कहंदे, जबकि सारियां चीजां खाण वालियां। शराब और कबाब, कबाब नो शराब चाहिदी है, शराबी नो कबाब चाहिदा है। इन्हां दोहां दा चोली दामन दा साथ है, और धन गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे रैवरी पुरुष ने, शराब दी गल कर रहे ने, कबाब दी गल कर रहे ने। खाणा है कबाब जरूर खा, पर जिस तरह दा ढंग मैं तेनू बनाण दा दसदा कबाब ओ खा। शराब पीनी है जरूर पी, पर जेड़ी मैं बनाण दा ढंग तेनू दसदा ओ पी। बन शराबी, बन कबाबी। ऐसा शराबी, ऐसा कबाबी कि परमात्मा भी तेनू सीने नाल लाण ते मजबूर हो जाए। किसे वक्त सतसंग नूं मैखाना कहा जांदा सी, अज ते खेड ही कुछ होर हो गई, सिलसिला कुछ होर हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, ए युग कलाल है,
अगर एक कलाल है तो इसदे कुल शराब केड़ी है। कल कल वाली काम मद, इसदे कुल काम दी शराब है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। धन भगत रविदास जी महाराज। हे प्रभु, तू जगत दा स्वामी, असी इस युग दे कामी, तो तालमेल किस तरह बैठे। एक दौर ऐसा भी लंघे है, हर पासे धर्म दी प्रदर्शनी सी, धर्म दी नुमाइश सी, बारों भी डुल डुल के धर्म पैंदा सी, गल दे च माल आए, हत्थां च माल आए, घर दे च मालां लटकियां हुईयां ने, ग्रंथ पए ने, तमाम धार्मिक साजो समान नाल घर सजे हुए ने, और घर देच भी जाके ऐसा पता चलदा सी जैसे मंदिर है, धर्मशाल है। दौर बदलिया, घर देच बार बन गई, घर देच बोतलां आ गई, घर देच वैश्याले बन गए। हैरानगी दी गल, पहले घर मंदर सन, घरम धर्मशाल सन, हुण ते बहुते धर्मशाले भी किसे हद तक मैखाने ही ने, भ्रष्टाचार दे अड्डे ने, दुराचार दे अड्डे ने। दौर बदले है, समय दा प्रभाव, महाराज कहंदे ने कलाल है ए युग, और ए बना रहा है काम दी शराब। ज्यादा चर्चा इसे दी है, ज्यादा यही देखिया जा रहा है टीवी ते, अखबारां विच, इश्तहारां विच, तरह तरह दे मैगजीन, तरह तरह दे गंदे नावल, जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां, हर पासों उजागर काम दी प्रदर्शनी, काम दी नुमाइश। आखिर मनुख कोल जो कुछ होवेगा उसे दी प्रदर्शनी करेगा, आखिर मनुख कोल जो कुछ है वही बार प्रगट करेगा। काम ही काम जीवन दी एक वक्ती लोड़ हो सकता है, काम जीवन नहीं हो सकता, लोड़ कतई जीवन नहीं होंदी। इसनो जिस आलमाना ढंग नाल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान कीता है, आप दे सामने रखा। पंकज फाते पंक महामद गुंथिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज, पंक कहंदे ने चिक्कड़ नू, पंकज पंक दे चो जमया, चिक्कड़ दे चो पैदा होया पंकज, पंक ने जन्म दिता है, चिक्कड़ ने जन्म दिता है पंकज। तो चिक्कड़ किसनु जन्म देंदा है? चिक्कड़ एक चोटी दे फुल नु जन्म देंदा है, जिसनु कमल कहंदे ने, जिसनु सौरभ कहंदे ने, जिसनु कंज कहंदे ने, जिनु पदम कहंदे ने, जिनु सारंग कहंदे ने, जिसनु बारिज कहंदे ने। धार्मिक ग्रंथां दे च गालमन इसदे 18 नाम ने, और ये धर्म दा प्रतीक है। अगर कोई धार्मिक मनुख है तो कह दिता जांदा है ते कमल दी तरह। भारत दे मंदरां दे गुंबद कमल ने। बोध भिक्षु जद सवेरे सवेरे भिक्षा लई चलदे ने, हद विच कमल दी पंखड़ी लेके, ताकि एहसास रहे विचर रहे हां बाजार विच गलियां विच, कमल दी तरह रहना है, डुबना भी नहीं, भिजना भी नहीं। महाराज कहंदे पंकज फाते पंक, जो पंक तो जमया सी, चिक्कड़ तो जमया सी, महाराज कहंदे चिक्कड़ी ची फस के रह गया। पंकज फाते पंक, पंकज पंक दे च फस के रह गया। कदी ऐसा होंदा है सरोवर दा पानी सुकन लग पैंदा है, ते बाहर दे जल झरने जो इस विच आ रहे सन वो अवरुद्ध हो जांदे ने, रुक जांदे ने, पानी नीवा होण लग पैंदा है। और
इतना नीवा कि चिक्कड़ दिखाई देन लग पैंदा है। और ओ कमल जो बहुत उपर उठाया होया सी चिक्कड़ दे नेड़े चला गया, पानी दे आसरे थे, बहुत उच्चा उठिया सी, बहुत उच्चा उठिया सी, नीवा चला गया, थल्ले चला गया। लेकिन अचानक जोर दी बारिश हो गई, चारों पासे दा जल झरना झरनिया दा रूप धारण कर सरोवर दी तरफ आया, और सरोवर बड़ी तेजी नाल भरन लग पया। जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहा है, इतनी तेजी नाल कमल उठ ना सकया। जितनी गति नाल पानी ऊपर उठ रहा है, ये गति कमल अपनी बना ना सकया। होया कि पानी ऊपर चला गया, कमल थल्ले चला गया। चिक्कड़ तो जमया, फिर चिक्कड़ दे फस गया। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उलझाए बिसरते सुंफिया। ऐसा चिक्कड़ दे उलझे है, अपनी सुगंध ही भुल गया, अपना स्वप्न ही भुल गया। चिक्कड़ तो जमया सी, हुण अपने आप नू चिक्कड़ ही समझ बैठा। जन्म काम तो है, अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड़ तो जमया ये कमल चिक्कड़ विच लीन हो गया। चिक्कड़ चिक्कड़ ही बन के रह गया, चिक्कड़ कमल नहीं हो सकया। काम राम हो जाए तो चिक्कड़ कमल बन गया, काम सिर्फ काम ही रह जाए तो कमल चिक्कड़ विच फंस के रह गया। ये उदाहरण बड़ा सुंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। काम तो जमया ए जीव, काम दे च ही फंस के रह गया। चारों पासे अज नाटक फिल्मा मैगजीन इश्तियारी दुनिया, अखबारी दुनिया, टीवी दी दुनिया, रेडियो दी दुनिया, समाजिक दुनिया, राजनैतिक दुनिया, हता कि धार्मिक दुनिया भी काम दी नुमाइश तो बिना होर कुछ रह नहीं गई। चारों पासे इस दी प्रदर्शनी। कारण ए जड़ा युग है, एक कलाल है, ऐ दे कोल शराब, यही शराब है। मनुखा नू किसे होर सरूर दा पता ही नहीं, किसे होर नशे दा पता ही नहीं। दुनिया दे सारे नशे भी काम दे आले दुआले मंडला रहे ने, और काम परबल नशा, जिस दे मनुख बेसुरत, मनुख बेहोश। ये गल वखरी है कि इतना खुल के इस विषय ते इतना बोलिया नहीं गया, लिखिया नहीं गया। और जद किसी ने कुछ लिखिया है तो उस ग्रंथ नू धर्म ग्रंथ नहीं आख्या गया। जद कोई बोले है तो उन्हां बोला नू धार्मिक बोल नहीं आख्या गया। हद हो गई। जिस तो जीवन जमे है उस मन दे बोल इनू एक पासे रख दईए, धर्म दा हिस्सा ना मानिए तो फिर ए ते इंज होई जिवें कह दईए जन्म ही नहीं होया, या जिथों जन्म होया सी इस नू मनदे ही नहीं। जीवन उदों सफल हो जांदा है कि जम्मे काम दे चां ते लीन होवे राम दे च, यात्रा सफल हो जांदी है। चिक्कड़ तो जमे है, पर चिक्कड़ ते पानी दोहां तो उच्चा उठे। काम तो जमे है, पर ए काम ते पदार्थां दोहां तो उच्चा उठे। पानी तो भी उच्चा उठे। कई दफा जोर नाल वधिया होया पानी भी डुबो के रख देंदा है, उपर नहीं उठन देंदा। अचानक धनवान हो गया है, अचानक सता मिल गई है, प्रभुता मिल गई है, बड़ी तेजी दे नाल धन संपदा आई है, नहीं संभाल सकया, गर्क हो गया, डुब गया। आहिस्ता आहिस्ता जब सरोवर दे च पानी पैंदा है, आहिस्ता आहिस्ता फुल भी उपर उठदा रहिंदा है। पर विरले कोई फुल ने ऐसे जो तीबर गति देच अपने आप नू तीबर गति च उठा सकन। पानी दा वेक बड़ा तीबर होवे, बड़े तीबरता दे नाल पानी वद्दा जा रहा, उच्चा हो रहा है, और इसी तीबरता दे नाल ओ अपने आप नू उच्चा कर सके,
कठिन हो जाता है, औखा हो जाता है। काम में ही एक शराब है जो एक कलाल अपनी दुकान ते सजा के बैठा है, वेच रहा है, पी रहा है, पिला रहा है। कल कलवाली काम मद मनुआ पीमण हार क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। ए समा ए युग ते कलाल है। काम दियां बोतलां, काम दी शराब सजा के बैठा है, पर ये किस प्याले विच पीती जांदी है और साकी कौन है, पिलाण वाला कौन है। कहिंदन कलाल होवे, शराब होवे, प्याला नहीं, साकी नहीं, तो मैं खाने दा रंग नहीं जमदा। इस कलाल दा जो मैखाना है, रंग जमे आया है। काम मद कल कल वाली, काम मद मनुआ पीवण हार क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। प्याला है क्रोध दा, साकी है अहंकार, और शराबी शराब दे पीण वाला है मनुख दा ए मन। तन भावें सारिया दे पानी पीण वाले हवन, मन ते सारिया दे शराब पीण वाले। तन भावें दुध पीण वाले हवन, मन ते सारिया दे शराबी ने। ए गल वखरी है, दिस पैंदा है ए मुंह नाल दुध पी रहे है, मन नाल शराब पी रहे है। मुंह नाल भोजन छक रहा है, पर मन नाल ते शराब ही पी रहा है। शराब ही काम दी शराब। शराब दा काम की है, बेहोश करना। काम वासना एक ऐसी बेहोशी है जिस विच मनुख नू अपना नाम धाम कुछ भी चेते नहीं रहिंदा। कहिंदे जन्म दा कारण भी बेहोशी है, मरण दा साधन भी बेहोशी है। बेहोशी च जमदा है, बेहोशी च मरदा है। बेहोशी दे च मरण दी क्रिया चल रही है, और बेहोशी दे च ही जन्म दी क्रिया चल रही है। बेहोशी हावी है, जब काम दे च होश हो गया है तो फिर मरण दे च भी होश होवेगा, और जिसका मरण दे च होश हो गया है, ना फिर जन्म ना फिर मरण, फिर तो अगम्मी दुनिया दा वासी हो जाता है। बहुत वड्डे अपराध करने अवन तो कई दफा मनुख अपने आप नु थोड़ा बेहोश करता है, शराब पींदा है। ते जे काम दी शराब दा नशा मनुख दे मन नु हर वक्त चढ़िया होवे तो इस दियां अखां ते हर वक्त मैलियां रहणगियां, इस दा तन ते हर वक्त मैला रहेगा। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, क्रोध कटोरी, क्रोध दा एक कटोरा है, प्याला है, मोह भरी, मुंह दे च क्रोध भरे है, मुंह कटोरा बने होया है। एदे च की है, काम दी शराब और क्रोध कटोरा बने है, क्योंकि क्रोध ते मुंह दे राही ज्यादा प्रगट होंदा है। भावें क्रोध अखां च भी प्रगट होंदा है, भावें क्रोध हत्थां च भी प्रगट होंदा है, भावें क्रोध चेहरे ते भी प्रगट होंदा है, पर क्रोध दी अस्थूल क्रिया बहुती जबान तो प्रगट होंदी है। और जब जबान चो क्रोध निकलन लग पवे तो जबान सख्त होंदी है। कहिंदे जबान दी सख्ती परमात्मा नू पसंद नहीं। खुदा को न मंजूर थी सख्ती जुबान में, इसीलिए न हड्डी रखी जुबान में। जबान दे च उसने हड्डी नहीं रखी, सख्ती नहीं चाहिदी जबान दे च। और जो जबान दे सख्ती ले आया है, समझ लो जबान दे च हड्डी आ गई है।
ਇਹਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਹੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਹੁਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਠੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਪਿਲਾਵਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਕੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਸੀਮ ਕਾਮ। ਅਗਰ ਕਾਮ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ। ਸੋਨਾ ਕੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਇਆ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਹੀ ਕੰਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ੰਗਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨਵਾ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਥੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭਦੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਲੋਭੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਜੀਵਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਭ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਜੀਵੇਗਾ? ਸੌ ਸਾਲ, ਚਲੋ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਭ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕੇਗੀ? ਕਿਤੇ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕੋ ਉੱਠ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਬੜਾ ਰਸ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਸੰਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
राजा खुश होया और कहन लगा, ए भिक्षु, फिर कल सब तो पहले साढ़े घर ही आना, इत्थे ही आना, असी भिक्षा लेके खड़े होवांगे। अक्सर बोध भिक्षुआं नूं भिक्षा देण लई भिक्षा दाते बार खड़े होंदे ने और देंदे ने। जिथे जिथे बौद्ध धर्म है, ये दृश्य बहुत देखन नूं मिलदे ने। राजा भिक्षा लेके पके हुए पकवान तरह तरह दे बार लेके खड़ा है। भिक्षु पात्र ले आया और आखिया, राजन पाओ। वो खीर पाई, राजे ने थल्ले डुल गई। भिक्षु ने किया, होर पदार्थ पाओ। राजे ने सोचा शायद कोई करामाती गल होवे, पात्र आपे ठीक हो जाए। तो फिर हलवा पाया, पूड़ियां पाईया, थल्ले डिग गईया। होर पदार्थ पाओ, तरह तरह दे बने हुए होर पकवान उस पात्र दे पाए, पकवान थल्ले बिखर दे गए, गिर दे गए। भिक्षु दा पात्र अगे है। राजा कहिंदा है, ऐ भिक्षु, तुसी भिक्षा मंगण ते आ गए और राज द्वार ते आए, पर कम से कम अपना भिक्षा पात्र ते वेख लेंदे, ये ते टूटे होया है, इहदा थल्ले पेंदा ही नहीं है। राजन, फिर मैं यही गल तैनू आखा, तू रब दी गल मैथों सुनना चाहना है, परमात्मा दा ज्ञान मैथों लेना चाहना है, तैनू अपना छलनी मन नहीं दिखाई देंदा। तेरे दित्ते हुए पदार्थ मेरे पात्र तो डुल गए, मेरा दित्ता होया परमात्मा दा ज्ञान भी तेरे पात्र तो डुल जाएगा। पहले अपना पात्र ठीक कर, भिक्षा मिल जाएगी। पहले अपना मन ठीक कर, भगवान मिल जाएगा। मजलस कूड़े लबदी, पी पी होए खुआर। इस शराब नू पी पी के दुनिया खुआर हो रही है और अपना जीवन अजाई गवा रही है, लेकिन शराब नाल कबाब जुड़े होया है। और अक्सर जद शराब दी गल चले, शराबो कबाब, कबाब दी गल चले, शराबो कबाब, कबाबो शराब, शराब कबाब खांदे हो। हालांकि एक पीण वाला है, एक खाण वाला है, पर शराब नाल कबाब जुड़ गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, कबाब खाने ने तो जिस ढंग नाल मैं तेनू जबा करन नू दसदा, बकरे नू इस ढंग नाल जबा कर। और जब तू उस छुरे नाल जबा करेगा और मेरे दसे ढंग दे मुताबिक करेगा, तो जब उस बकरे च खून निकल जाएगा, जान निकल जाएगी, वो जड़ा मांस होवेगा जे किधरे तू खा लवे, कदी जिंदगी तेन भुखी नहीं लगेगी। हर वक्त रजिया रहेगा, हर वक्त त्रिपत रहेगा। तो जे हुण पुछिए, बाबा केड़ा छुराया? गुरु नानक दे बोल बड़े कीमती है। सच की काती सच सब सार, छुरा होवे सच दा। सच नूं छुरा क्यों कह दिता? सच ऐसा छुरा है, ये दो धारा खंड है और दो नौका खंड है। सच बोलांगे दूजे नूं भी चुभदा है, अपने नूं भी चुभदा है। ये दूजे नूं भी घायल करेगा, अपने नूं भी करेगा। इस वास्ते सच बोलना कठिन है, कठिन है। ये दूजे नूं चुभेगा पर अपने नूं भी चुभेगा, और जब चुभेगा कटेगा तो छुरे दा एक कम है, जब किसे दी गर्दन कटे, किसे दे अंग नूं कटे, किसे नूं चुभे, तो खून ते निकलेगा। अगर सच दे छुरे नाल जबा करिए और सच दा छुरा ए चुभे दो दारा, तो झूठ ते निकलेगा।
झूठ दा ही खून मनुख दे अंदर है, खून नहीं है झूठ है मनुख दे अंदर। बाहर दे छुरे नाल शरीर चो खून निकलदा है, सच दे छुरे नाल कोई जबा होवे अंदरों झूठ निकलदा है। सच की काती सच सब सार, घाड़ तिसकी अपर अपार, ये जो सच दा छुरा है इदा लोहा सच है, इसकी जो धारा है घाड़त है वो भी सच है। किसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखथा वेख। अगर इस छुरे नाल जे किधरे कुठा करें, दो तरीके ने, कुठा झटका, एक झटके नाल गर्दन अलग की थी झटका, आहिस्ता आहिस्ता रेत के गर्दन अलग की थी, इनू कुठा कहंदे ने, कोणा आहिस्ता आहिस्ता। जे तू इस ढंग नाल आहिस्ता आहिस्ता कोवें, सच नू सहजे उचारण करना पैंदा है। और सच की है परमात्मा दा नाम, ये पहले जबान ते आवे तो जबान दे चो हड्डी निकलेगी, जबान दे चो सख्ती निकलेगी। ये हो नहीं सकदा, जिस जबान ते राम है उस जबान दे सख्ती होए, जिस जबान ते वाहेगुरु है उस जबान ते क्रोध होवे, ये हो ही नहीं सकदा। जहर इस गल दा सबूत है, अजे जबान ने अमृत दा रस नहीं माणे। सख्ती इस गल दा सबूत है, ये जबान जबान नहीं रह गई, क्योंकि जबान विच हड्डी नहीं आउंदी, जबान विच सख्ती नहीं आउंदी, जबान विच हड्डी आ गई है, ये मांस दा टुकड़ा ते बन के रह गई, जबान नहीं है। तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखथा वेख। परमात्मा दे नाम नु छुरा कह देता है गुरु नानक ने, ऐसा छुरा है को के रख देगा। छुरे ने कोणा है तो निकलेगा कि निकलेगा काम, निकलेगा लोभ। एक कसाई छुरा फेरदा है बकरे थे, निकलदा है खून। बाद देच आंदरा ओजरी कड़ के परे सुटदा है, पर सच दे छुरे नाल जद किसे दा मन जबा आउंदा है, लोभ निकल जांदा है, वासना निकल जांदी है, शुद्ध मास रह जांदा है, शुद्ध मन रह जांदा है। उसे नू कहंदे ने मन शुद्ध हो गया, मन पावन हो गया। सच की काती सच सब सार, गाड़त तिसकी अपर अपार, तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखता वेख। ए शेख, जे इस छुरे दा किधरे तू जवा कीता होया मांस खा लवे, परमात्मा ने कबूल कर लेना है, ईश्वर ने कबूल कर लेना है। खा मांस जरूर खा, पी शराब जरूर पी, पर केड़ी शराब? धन गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी दे नाल बोल जुड़े ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम दी शराब पी। तो नाम शराब है, हां नाम एक ऐसी शराब है, और ऐसा सरूर तारी हो जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे विकार निकल जाते हैं। बाहर दी शराब जितने जितने घुट अंदर जाएगी, वो शराब ही अंदर नहीं जा रही, विकार भी अंदर जा रहे हैं। शराबी कामी होवेगा, शराबी क्रोधी होवेगा, शराबी भोगी होवेगा, सारा अनर्थ शराब नाल जुड़ गया। बेशतर मुल्कां दे शराब पानी दी तरह पीती जा रही है, दुराचार आम हो गया, या इंज कह लो दुराचार दे बाजार, बाजार ही दुराचार दा रूप धारण कर गए। बिकदियां सन जिनसां किसे वक्त बाजार देच, कपड़ा बिकदा सी, सोना चांदी बिकदा सी, फल फूल बिकदे सन, पर ए बाजार अज मामूली रह गए ने,
इसत्री दी असमत बिकदी है, इज्जत बिकदी है, इना बाजारां दी महिमा बहुत वड्डी होगी। ए नाम मात्र कहलाण वाले क्लब ए थिएटर और इस तरह दी आयाश दी दुनिया वैश्याले सब असमत फिरोशी दे अड्डे बिकदी है। असमत इसत्री दी बाजार दे हुण दुराचार बिकदा है, बाजार दे वस्तुआं नहीं। अगर कोई नाम दी शराब पी लवे, शराब किवें बनेगी? गुड़ कर ज्ञान, ध्यान कर मऊआ, भाव भाटी तन धारा, रब्बी भय दी भट्ठी बना, उहदे च रब्बी ज्ञान दा गुड़ पा, उहदे च रब्बी ध्यान दा मऊआ पा, मऊआ एक फुल, ते भय दी भट्ठी मनुख समाज तो डरदा है, मनुख कानून तो डरदा है, मनुख परमात्मा तो नहीं डरदा। संकोचमई बिरती बना देंदा है कानून दा भय, समाज दा भय, भी समाज दियां नजरां नहीं ने ते हुण मैं गुनाह करा, कानून दी पहुंच नहीं है ते हुण मैं पाप करा, है ते पापी पर पाप उत्थे करेगा जिथे तक कानून दी निगाह नहीं पहुंच सकती, है ते गुनाहगार पर गुनाह उत्थे करेगा जिथे समाज दियां नजरां नहीं पहुंच सकदियां। लेकिन रब दा भय अगर ए मनदा है तो गुनाह होवेगा ही नहीं, पाप होवेगा ही नहीं। रब्बी भय ने पवित्र करके रख देना है, शुद्ध करके रख देना है। ए भय दी तू भट्ठी बना, एदे च पा ज्ञान दा गुड़, एदे च पा ध्यान दा मऊआ। अग केड़ी इस भट्ठी दे तले बालनी है, दो पुर जोर रसाई पाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। दो पुर जोर, सुरत ते शब्द नू जोड़, ये दो पुड़ा नू जोड़ के बना चुल्ला, दो पुड़ा नू जोड़ के चुल्ला बनदा है। सुरत ते शब्द नू कठा करे बना चुल्ला, इस देते रख भय दी भट्ठी, पा ज्ञान दा गुड़ ध्यान दा मऊआ, थले बालन केड़ा डाणा है, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। काम दा ईंधन, क्रोध दा ईंधन, ये थले बाल। जैसे जैसे तू ज्ञान दा गुड़ पांदा जाएगा, ध्यान दा महुआ पांदा जाएगा, और जैसे जैसे ते तू सुरत ते शब्द नू इक करदा जाएगा, काम सड़दा जाएगा, क्रोध सड़दा जाएगा, आखिर ईंधन ही ते जलदा है। तो काम ईंधन है, जलेगा, क्रोध ईंधन है, जलेगा। काम क्रोध करके जिंदगी चल दिए, ईंधन करके जिंदगी चल दिए, अग करके ये अग खत्म होवेगी, क्योंकि ईंधन उतने चिर तक ईंधन है जो कारामद होवे। ईंधन उदो बर्बादी बन जाता है जब अग मकान नू लग जाए, दुकान नू लग जाए, साड़ के राख कर देवे। काम क्रोध दो किए जलेता, छूट गई संसारी। सड़ गया क्रोध, सड़ गया काम। वो जो ज्ञान दा गुड़ सी, वो जो ध्यान दा मऊआ सी, वो ऐसा पकया, उदे चो निकली शराब नाम दी, उदे चो निकली शराब प्रभु दे सिमरन दी। तो पुछिए कबीर, ये शराब बनानी किस तो सीखी, कौन सिखांदा है? इस तरह दे शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर दे, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत सारे ने। प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मद माता, उचक न कब हो जाई। ए समझ गुरु तो लई है, और जिस दिन दी ये शराब पीती है, और बाकी शराब पीण नू जी नहीं करदा। राम दा रस आउंदिआं ही काम दा रस मिट जांदा है, राम दा रस आउंदिआं ही क्रोध खत्म हो जाता है।
ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਲੋਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੋਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਮੂੜ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਏ ਹਲਾ ਹਲ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਏ ਹਲਾ ਹਲ ਹੈ ਵਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾਦਾਂ, ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੁਝਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਪੀਣੇ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਮ ਰਸ ਵੀ ਰਾਮ ਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਸ ਵੀ ਕਾਮ ਰਸ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਮ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾਲ ਤਰਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਤ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰਮਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਖੀਏ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਿੱਠੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ। ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਤੇ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਸਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਲਾਲੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਰਸ ਪੀਵੇਂ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਾਵੇ।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले

तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामे। तो की है मैं की हां यदि वजाहत भगत सिरमौर श्री रविदास जी बयान कर रहे हैं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इस युग देच मनुख दा जेड़ा अवगुण प्रधान है उसका जिक्र पै कर दे। हर समय हर युग देच एक अवगुण प्रधान आउंदा है, ये मैं अर्ज कर दें। बाकी अवगुण भी होंदे न, वो जेर साया होंदे ने, एक अवगुण प्रधान होंदा हर व्यक्ति विच। बहु गिनती विच इक्को ही तरह का अवगुण मनुखता दे अंदर प्रधान होवे, 60-70% दे अंदर, उस नाल फिर तुलना कीती जांदी है इस युग का अवगुण केड़ा है। हर युग का अपना गुण होंदा है, हर युग का अपना अवगुण होंदा है। हर व्यक्ति का भी बुनियादी गुण कोई एक अद आउंदा है, बाकी गुण उहदे जेर साया आउंदे ने। हर व्यक्ति का बुनियादी अवगुण एक आउंदा है, बाकी सारे अवगुण उस एक अवगुण के पिछे चलते हैं। श्री रविदास ने जो इशारतन गल की थी है, इनू जगत गुरु बाबा वकत दे अवतारी पुरश, इस युग दे अवतारी पुरश, धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस तरह खोलते ने, ये मैं थोड़े सामने रखा। पूर्ण तौर पर उन्होंने बोलों मैं खोल सकांगा ये समर्था नहीं, पर कुछ जो सतगुरु ने शक्ति ते प्रेरणा जिस तरह की प्रदान की थी, मैं थोड़े सामने रखण की निमाणी कोशिश कर रहा हूं। कल कल वाली काम मद, जिन्होंने कदी सिलसिलावार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया है, ये आया होवेगा वाक श्लोक मरदाना पहला। बहुत सारे ऐसा कहने ने वाक मरदाने का है, और जो पहला जो लिखे है फिर उस तो की लोगे। बोल गुरु नानक देव जी का है, मरदाने दे प्रति उच्चारण किया। जैसे सारंग राग दे शब्द गुरु अर्जन देव जी का है, सूरदास दे प्रति उच्चारण किया। कुछ गिला मरदाने ने मनुखता बारे किया, शहर दे बंदियां बारे। साहब जिस ढंग नाल युग की तस्वीर खिंचदे पए ने, वो ध्यान नाल सुनना। कल कल वाली ए युग कलाली है। कलाल उसनों कहने जो शराब बनांदा है ते शराब बेचदा है। अज ते बनदी कारखानिया दे चे बेकदे दुकानदार ने, पर प्राचीन काल दे च बनाना ते बेचना एको ही मनुख दा काम आउंदा सी, उहनू कलाल कहिंदे सी। कलाल महाराज कहिंदे ने इह जिहड़ा युग है ना कलाल है। शराब बनांदा है, शराब पिलांदा है, बेचदा है। किहड़ी शराब किस तों बनांदा है? शराब कई प्रकार दी, गुड़ तो बनती है, गुरां तो बनती है, संतरियां तो बनती है, वख वख शराबां। ए युग

अवतारी पुरुष अपने हाथ च शस्त्र रखते ने, राम दे कोल धनुष बाण है। ये गल वखरी है, महात्मा गांधी दा धार्मिक तालमेल ते बैठा कृष्ण नाल, लेकिन राजनीतिक तालमेल कृष्ण नाल नहीं बैठा, वह राम राज चाहते सन। कहिंदे राज चाहिदा राम दा, कमाल दी गल, धर्म चाहिदा कृष्ण दा, राज चाहिदा राम दा, कृष्ण दा राज नहीं चाहिदा। राम राज दी ओ गल करदे रहे, रामायण एक दिन भी नहीं पढ़दे सन, पढ़दे गीता सन। कारण श्री कृष्ण उन्हां दी सोच नहीं, किसी वक्त खुलासा मैं थोड़े सामने रखांगा। वह कहिंदे सन एक पासे मनुख है, एक पासे कानून है, ते जे मेरे सामने मसला खड़ा हो जाए, कानून नूं बचाना है कि मनुख नूं बचाना है, तो मैं मनुख नूं बचावांगा। कानून रद्द हुंदा ते होण दे, मनुख कानून लई नहीं है, कानून मनुख लई है। मनुख मर्यादा लई नहीं है, मर्यादा मनुख लई है। राम दा फैसला ए सी जे मनुख सामने ते मर्यादा सामने, ते दोहां दे च इक नूं बचाणा होवेगा, मनुख नूं कुरबान कर देंगे, मर्यादा बचावांगे। इस वास्ते उहनां नूं मर्यादा पुरशोत्तम आख्या गया, मर्यादा बचावांगे। बंदे नूं फांसी ते चाड़ना है तो चाड़ देंगे। ब्राह्मणां दी बनाई हुई मर्यादा सी कि शूदर वेद नहीं पढ़ सकदा और शूदर वेद नहीं सुन सकता, अगर सुन लवे तो उहदे कन्न दे सिक्का डाल दो और उहनूं फांसी ते चाड़ दो। राम राज दे शंभूक नाम दे जीवर नूं फांसी ते चाड़िया गया। मैं ते भारत दे च ऐसा भी आख्या, राम राज चाहते हो, जितने शूदर ने इन्हां नूं फांसी ते चाड़ना पैगा, क्योंकि रामायण भी पढ़ते हैं, वेद भी हुण सुनन लग पए ने, मंदरां च भी जाण लग पए ने, किधरे तुसीं नहीं भी इन्हां नूं जाण देंदे। इन्हां दे सारयां दे कन्नां च शीशा ढालना पैगा, फांसी ते चाड़ना पैगा। राम राज दे च इही कुछ होया सी। और जे किधरे किसी धोबी ने, किसी ने एवें खामा खा साडी पत्नी दे उत्ते शक कीता, घरों भी कढ़ना पेगा, क्योंकि राम ने घरों कढ़ दी सी धोबी के कहने थे। फिर जिस किसी पड़ोसी ने उंगल उठाई के स्त्री ठीक नहीं तो घरों कढ़ो। जिथे तक मर्यादा ते कानून का सवाल है, कृष्ण का यह कहना सी कि मैं फिर मनुख नूं बचावांगा, मर्यादा कुर्बान होंदी ते होण दो। राम कहिंदे सन नहीं, मैं मर्यादा नूं बचावांगा, मनुख कुर्बान होंदा ते होण दो। इस वास्ते गांधी ही राज ते चाहते सन राम दा, धर्म चाहते सन कृष्ण दा, क्योंकि कृष्ण दे धर्म दे च ज्ञान बड़ा सी, जो गीता दा फिलसफा है, बड़ा ज्ञान है, बड़ी गहरियां गल्लां ने। अर्जन दे बहुत उच्चे उच्चे प्रश्न ने और कृष्ण दा बहुत वड्डा जवाब है। और गजब दी गल, जिसने शस्त्र चुके होवन ते अपने ज्ञान ते दलीलां दे नाल फिर शस्त्र चुकवा लवे, तो दलीलां ते बड़ियां प्रबल सन, समझाण दा ढंग ते बड़ा प्रबल सी, राम कोल नहीं सी। ये भी मैं अर्ज करदे हां। इस वास्ते हिंदू जगत 14 कला अवतार मनदा राम नूं, 16 कला मनदा कृष्ण नूं, उसनूं वड्डा मनदा, उसनूं महान मनदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ये बोल, जद कुछ अहलकारां ने कहा तुसी फकीर हो, थोड़े हाथ दे च माला चंगी लगती है, थोड़ी जबान ते अल्लाह खुदा दा नां चंगा लगता है, कि तुसी किहड़े पासे पै गए। पता सतगुरु की कहिंदे ने, श्री मुखवाग पातशाही दसवीं जफरनामा, बलाचार गई दरमिया आमदम, मैं ते लाचार हो गया, मजबूर हो गया, मेरी माला ने कम नहीं कीता, मेरी शांति ने भी कम नहीं कीता, मेरे ज्ञान का भी असर नहीं होया। पवन जब चल रही है, दरखत झूलते ने, पत्थर नहीं झूलते। और पत्थरों देते उस पवन का कोई असर नहीं पैंदा। मैं ज्ञान की हवा बड़ी चलाई, मैं शांति का वातावरण बड़ा बनाया, मैं मिठास की खुशबू बड़ी खिलेरी, पर पत्थरों से कोई असर ही ना होया। बलाचार भी दरमिया आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम, मैं ते लाचार हो गया, मजबूर हो गया, तोप चुक ली, बंदूक चुक ली, तलवार चुक ली, वरना यह मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं यह मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। हेमकुंड का किथे तपीश्वर हो गए, ते पुराने संस्कार ऋषि मुनिया वाले होवन, चुकनी पै जाए तलवार तो फिर कुछ ना कुछ ते मजबूरी होई होनी, मजबूरी आप कहते पैने। बलाचार गई दरमिया आमदम।

سنمان یوگ گرو روپ سات سنگ جیو فتح پروان کرنی واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح. لڑی وار آپ وچار سرون کر رہے ہو شام دے دیوان وچ. اتنی لمبی تے لڑی یہ نہیں کرنی سی پر ہو گئی. جپ جاپ اے بنیادی مول بانیاں. اج بھائی ہرچرن سنگھ جی وچار کر رہے سن کہ بہت سارے ایسے سجن نے جنہاں نوں جاپ صاحب کنٹھ نہیں پڑھ نہیں سکدے. انہاں دے چ ایک وشیشتا ہے اے واجے جوڑی نال جاپ صاحب پڑھا کے قریباً قریباً کئیاں نوں کنٹھ کرا دیندے نے, شدھ کرا دیندے نے. شاید اے 8 یا 9 تاریخ تو اگلے ویک تھوڑے سامنے اس طرح رات نوں کریا کرن گے. اے داس دے بہت پرانے ساتھی نے غالباً سن 58-59 تو بہت پرانے ساتھیاں دے چوں گرمکھ سجن نے. خیر مختصر میں عرض کراں, جپ مول ہے, جپتے ہی ساری گرمت کھڑی ہے, جپتے ہی ساری سکھی کھڑی ہے. جپ کڑ دے ہوتے سکھ سکھ نہیں ہے. گرو دی مت ساری جپ دی ویاخیا ہے, جپ دی پریرنا ہے. جپو تا ایکو ناما اور نرا فل کاما, یہی جپ جاپ بن جاندا ہے. نرمانتا دی مورتی سجدے انت روپاں نو سجدہ. یہ جپ جاپ جد بنتا ہے تو یہی جاپ بیراگ بن جاتا ہے. جپ جو رسنا دوارا ہے, جاپ جو پرانا دوارا ہے, بیراگ یہ پرش ہوں سنسار تو اکھڑ گیا ہے. رہندا جگت وچ پیا ہے پر جگت تو اکھڑ گیا ہے. رہندا پروار وچ پیا ہے پر پروار تو اکھڑ گیا ہے. اس طرح جیسے ایک دلیل داس نے دیتی سی, پکا ناریل ہال دے اندر ہی اجے گری لیکن سمبندھ توڑ بیٹھی ہے تے ہال دے اندر, پر ہن ہال نال کوئی رشتہ نہیں رہا. جد کچی سی تے ہال نال چمڑی ہوئی سی, ہن نہیں. بیراگ جیسے پکدا ہے منک اس سنسار دے کھول نو, شریر دے کھول نو, پروار دے کھول نو چھوڑ دا ہے. رہندا پروار دے چ ہے لیکن نرلے, رہندا سنسار دے چ ہے نرلے, رہندی آتما اس شریر دے چ ہے نرلے. اس طرح دا پرش قریباً قریباً ہر وقت اداس ہوے گا. جگت دیچ سمجھ آ جائے گی اس نو ایسا کچھ بھی نہیں جس دیچ میں جی سکاں, بیراگ. اور اسی اداس برتی دیتے سنیاس کھڑا ہے. جیسے کل داس نے عرض کی تھی, رے من ایسو کر سنیاسا, من سے سدن سبہ کر سمجھو من ہی ماہے اداسا. جو من تو اداس ہو جائے وہ سنیاسی ہو جاتا ہے. اداس منک ہے تین چار کارنا کر کے ہو سکتا ہے. گیان کر کے, کتھا کیرتن سنیا تے کتھا کیرتن چوٹ کر گئی, اداس ہو گئے, سمجھ آ گئی. دوسرا تارکک ہے, کتھا کیرتن نے تے چوٹ نہیں کیتی پر سوچ دا بہت زیادہ ہے, وچار دا بہت زیادہ ہے. اور اس دے اپنے وچار اتنے پربل, اتنی سوچنی پربل ہو گئی کہ سنسار تچھ محسوس ہوندا ہے. بڑے بڑے عظیم چنتک دارشنک فلاسفر اداس ہی رہندے نے. اور میرج کرنا جتنے او بے چین تے اداس رہندے نے اتنا اور کوئی بھی نہیں. جتنے او زیادہ سوچدے نے اتنا سنسار آسار پرتیت ہوندا ہے. اتنی گل تے سپشٹ ہے کہ سنیاس تے اداس برتی دا چولی دامن دا ساتھ ہے. جو اس جیون تو اداس نہیں او پرم جیون دی تلاش نہیں کرے گا.
जो पदार्थां तो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। या इंज कह लो परमात्मा की तलाश कौन कर रहा है जो पदार्थ तो उदास हो गया है। परम जीवन की खोज कौन कर रहा है जो इस जीवन तो उदास हो गया है। निरंकार की तलाश कौन कर रहा है जो संसार तो उदास हो गया है। संसार तो उदासी कुछ कारना करके होंगी है। प्रथम ज्ञान करके, दूसरी अपनी निजी सोचनी करके, तीसरा कोई चोट लग जाए बड़ी गहरी संसार तो उदास हो जाता है। चौथा है संसार दिस जो कुछ प्राप्त करना चाहता है नहीं होया, उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के उदास बंदे की जिसकी संसार दे चजे पूर्ति नहीं हुई, एक निक्की जी आसा बनी रहती है चलो अज पूर्ति नहीं हुई कल हो जाएगी। ये पूर्ण तौर पर निराश नहीं होता। पर जो निजी सोचनी करके है वो तो पूरा उदास हो जाता है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन दीवाने गालिब, हालांकि संसारी पद्धर का शायर है इश्क मिजाजी, अजे हकीकी दे नेड़े नहीं गया, लेकिन कहिंदा है इस दुनिया च मैं जी के की करा, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। कहिंदा सारा संसार बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नादान लोग, इन्हां नाल मैं किस तरह जीवां, सवेरे खा लेना शामी खा लेना कल फिर खाना, ये इसे तरीके नाल जिंदगी बतीत करी जाना। गालिब कहिंदे ने ते मैनूं इंज लगदी है जिवें मशीनी जिंदगी है, मैं इस नाल जीवन नूं राजी नहीं, इते बचकानी खेल है। बाजी चाहे इतफाल, इतफाल कहिंदे ने बच्चे, तिफल कहिंदे ने बच्चे नूं, इतफाल बच्चियां दी जमा। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आ गए, होता है शब रोज तमाशा मेरे आ गए। कहिंदा दिन रात ए बच्चियां दा खेल हो रहा है, एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। औरंग कहिंदे ने तख्त जिदे उते बादशाह बैठता है, तख्त सुलेमानी बच्चियां दा खेल प्रतीत होंदा है। जिस तख्त लई दुनिया इतना संघर्ष कर दी है, इतना लड़ दी है, गालिब कहिंदे ने इस ते बैठ के मैं खुश नहीं हो सकता, इते बच्चियां दा खेल है, कुछ भी नहीं। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आ गए। गालिब कहिंदा हजरत ईसा दे मौजे भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। वो किसे अंधे दे सिर ते हथ रखदा है उन्हों सुजाखा कर देंदा, किसे बीमार दे सिर ते हथ रखदा है तंदुरुस्त कर देंदा, किसे मुर्दे दे सिर ते हथ रख देंदा है तो जिवा देंदा है। गालिब कहिंदे है जिसनू जिवा दिता है क्या फिर नहीं मरिया, जे फिर मरिया तो बच्चियां दा तमाशा करदा रहा और की। कहिंदा मैं ईसा दे नाल भी जी नहीं सकता, ये भी बचपना है, मैं तख्त सुलेमानी ते भी बैठ के जी नहीं सकता, ये भी बच्चियां दा खेल है, और मैं संसारी मनुखां दे नाल भी जी नहीं सकता, सब बच्चे ने। जद मनुख की सोचनी बड़ी बुलंद हो जाए, यकीन जानो आम मनुख उस बच्चे प्रतीत होने लग पेंदे, बिल्कुल बच्चे। गालिब कहिंदा मैं जीवां ते किस तरह जीवां, मेरे लिए जीवना बड़ा औखा है। हुण इस तरह का मनुख या ते जीवन शैली नूं बदले या इस जीवन नूं भुलाण दी कोशिश करे या मिटाण दी कोशिश करे, तीन तरीके ने, या ते जिंदगी नूं बदले या जिंदगी नूं मिटावे या जीवन नूं भुलाण दी कोशिश करे। इसने तीसरा तरीका चुन लिया, शराब पी के अपने आप नूं भुलाण दी कोशिश करता रहे, सवेरे पींदा है दोपहरे पींदा है, नशा टुटन ही नहीं दिंदा। इतना अजीम चिंतक,
इतना गहरा दार्शनिक हर वक्त नशे च रहिंदा है और हालात इत्थे तक पहुंच गए, बाल बाल करजाई हो गया, अंग्रेजों की हुकूमत हो चुकी सी, बहादुर शाह नूं रंगून की जेल विच कैद कर दिता सी। ये दरबारी शायर भी सी बहादुर शाह का, तो अंग्रेजा ने इस नूं सियाणा चिंतक दार्शनिक जान के उस जमाने च 84 रुपए इसकी माहवार पेंशन बन दिती, और बहुत सन 84 रुपए उस जमाने दे, पर इस सारे दी शराब पी जांदा सी, सारा दिन पीनी, नशा टुटन ही ना देना, पीनी पिलानी बस इसे चीज जो है हर वक्त गायब रहने लग पे। हालात इत्थे तक पहुंचे, मुफलसी, बाल बाल करजाई हो गया। अज बेगम आके अगों रोई भी, अज मैं थोड़े लिए खाना भी नहीं बना सकती, घर विच कुछ भी नहीं है, और कोई बाणिया कोई दुकानदार मैनू उधार देने नू तैयार नहीं, ते थानू जो कुछ मिलता है पी लेंदे हो। अद्धा हिसाब किताब मेरे हवाले करो, अद्धी रकम ते मैं कम से कम घर ते चला सका, थोड़े लिए रोटी की दिक्कत ते ना होए। वक्त दा इतना अजीम मनुख रोटी तो भी आतर हो गया सी। घरवाली नूं रोंदे होया ते मजबूर हालत विच देख के गालिब कहिंदा, अच्छा खुदा दी कसम हुण जद पहली तरीक आवेगी 84 रुपए मिलणगे, अद्धे तैनू दे दें, अद्धे तेरे। खुश हो गई बेगम, उसने कह दिता फिर मैं 2-3 महीने च सारा उधार भी ला देंगी, घर भी ठीक चलेगा, तुसी अद्धे मैनू दे दिता। खैर ज्यों द्यों करके इसने दिन टपाए, पहली तरीक आई, घरों बड़े सोहने ढंग नाल बेगम ने विदा कीता, और उड़ीक दे घर दी चौखट ते ही बैठ गई, हुणे गालिब आएगा। दोपहर हो गई नहीं आया, दोपहर ढल गई नहीं आया, शाम पै गई नहीं आया। दुखत होई, मायूस होई बेगम। ज्यों सूरज ढलिया थोड़ा जिहा हल्का हनेरा पैण लगा, लड़खड़ांदा होया गालिब आंदा होया दिखाई दिता है। 10 खचरां दे उत्ते शराब दियां बोतलां लदियां हुई, इस तरह ही करदा हुंदा सी, फिर दिन रात पींदा रहिंदा सी। घर दे खचरां बूहे ते आ गईयां, शराब दियां लदियां हुई, आप भी लड़खड़ांदा होया जारो जार फुट के रो पई बेगम। और ए बेगम ने आख्या, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी कि अद्धी माया दे देंगा, कि तुसी सारे दी शराब ले आए, और मैं महीना किस तरह लगाऊंगी, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी। गालिब कहिंदा है, उसे खुदा ने मेरी कसम तोड़ दित्ती। किस तरह? कहिंदा है, जद मैनू 84 रुपए मिले ना, मैं बिल्कुल घर दी तरफ आ रहा सी, कि 84 दे 84 तैनू देने सन, पर करां की, रस्ते च खुदा दा घर पै गया, मस्जिद पै गई, मौलवी वाज दे रहा सी। असी कहिंदे आ कथा करनी, हो कहिंदे वाज देण, मौलवी वाज दे रहा सी, तो मैं सोचिया चलो खुदा दी गल भी अज सुन ली है। की कहिंदा है? मौलवी सारे स्रोतियां नूं नमाजियां नूं मुतासर होके कह रहा सी, सारियां नूं मुखातब करके, कि रोजी दहिन खुदा है,
ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹਿੰਦ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਗਾਲਬ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਾ। ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਲ। ਮੂੜ ਬੰਦੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਆਣੇਪਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਜੈਸਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਅਬ ਤੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਇਤਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਉਦਾਸੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਵੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਪ ਜਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੈਸੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਔਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ,
कि मैं नहीं जीवना चाहता, उदास हो गया सी। खुद नू खत्म भी ना कर सकया, खुद नू बदल भी ना सकया, खुद नू भुलाने की कोशिश करन लग पिया। पी गए ये सदी बहुत सियानी सदी है, ज्ञान विज्ञान ने बड़ी तरक्की की थी है और बड़ी तेजी नाल ज्ञान चले है। कदम कदम ते स्कूल कॉलेज और जितनी सियाण बद गई उतनी उदासी बन जो है बद गई, और जितनी उदासी बद गई है उतनी शराब बद गई, उतनी लोकी पानी दी तरह पीण लग पे, लोकी बेहोश होना चाहते, अकल तो थल्ले जीवना चाहते, ना सोचिए क्योंकि सोचदे आते बेचैन, सोचदे आते दुख, सोचदे आते तकलीफ। उदास होने दे ए तीन कारण ने, या ते दिमागी तल ते जीवे बहुत सियाणा होया, या उसनू कथा कीर्तन चोट कर गई है, या संसार तो कोई चोट लग गई है, परिवार तो कोई चोट लग गई है, उदास हो जाएगा। लेकिन एक खतरा है, जड़ी संसार तो चोट लगे है लाजमी नहीं है ये जिंदगी नू बदलन की कोशिश करे, बल्कि अक्सर मौका तो यह आता है जिंदगी नू खत्म करने की सोचता है। सारी दुनिया च लोकी सुसाइड कर देने, आत्महत्या होंदी है, और संपन्न अमीर देशां ज्यादा है बनिस्पत गरीब देशां दे, क्योंकि गरीब इतना उदास ते निराश नहीं आउंदा, वो कल दी आसा बनाई रखता है, चलो अज मेरे कोल कुछ नहीं ते कल हो जाएगा। ये जिहड़ी कल दी आसा है उन्हूं निराश नहीं होण देंदी। जिस मनुख की जिंदगी च कल रहा ही नहीं, जो कुछ चाहिए अज प्राप्त है तो तृप्ति नहीं हुई, सुकून नहीं मिलिया, तो उदास तो हो जाएगा। तो हुण यह किस तरह जीवे, किवें जीवे, ये तो खुदकशी करेगा, सुसाइड करेगा, सारी दुनिया च है। या तो कोई संसार तो चोट लग गई है, या अपनी सोचनी बड़ी प्रबल है, या सतगुरु दे शब्द ने चोट कर दिती है, परमात्मा दे नाम ने चोट कर दिती है। ये अलग अलग चोटां दे नतीजे अलग अलग होणगे। अगर शब्द ने चोट कीती है ये सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, ये खुद नू बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जी रहा इस तरह नहीं जीवना, जिंदगी बदलनी है, जीवन नू बदलना है। पर संसार तो चोट लग गई है, लाजमी नहीं कि जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू खत्म करने की कोशिश करे। ते सोच सोच के इस नू चोट लग गई है, जगत कुछ भी नहीं है, लाजमी नहीं है जगत जो है जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू भुलाने की कोशिश करे, शराब पी के कोई भी नशा करके। नशे दुनिया च इस सदी तो नवे प्रचलित हुए ने, क्योंकि सदी बड़ी सियाणी सदी है और बड़ी उदास सदी है। किस तरह जीए, जिहड़े मनोरंजन दे साधन अज मौजूद ने पहले नहीं सन, और जितना उदास अज दा मनुख है पहले कदे ही नहीं सी, क्योंकि अजोका मनुख सोचदा बहुत है, विचारदा बहुत है। मैं फिर दोहरा दें, आप सारे सियाणे बैठे हो, उदास बिरति तीन कारण करके पैदा हो सकती है, या तो खुद हर वक्त सोच विचार दे तल ते जीए और बड़ी गहरी उसकी सोचनी होवे, इस जीवन नाल सहमत नहीं होएगा, ना संसार नाल, इत कुछ भी नहीं है, किस तरह जीवी है, जैसे गालिब ने कह दिता किस तरह मैं जीवा, इन्हां बच्चियां दे च मैं किस तरह जीवा, इस बचकानी जिंदगी नूं मैं किस तरह जीवा। एक ते अपनी सोचनी तो उदास बिरती दा जन्म हो सकता है, दूसरा कोई चोट लग गई है, बहुत वड्डी बेइज्जती हो गई है, बहुत गहरी चोट लग गई है, और ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ भी नहीं जगत, ये जीवन कुछ भी नहीं, उदास हो गया है। या जपदियां जपदियां परमात्मा ने नाम नहीं चोट कर दिती है, गुरु दे शब्द नहीं चोट कर दिती है, कथा कीर्तन तो ही चोट खा गया है, उदास हो जाएगा।
कथा कीर्तन ने अजे चोट नहीं की थी। दरअसल कथा कीर्तन तो इसने अपने मन नु बचाया, एक पासे कीता है, इस वास्ते चोट नहीं की थी। ये उदास नहीं होया, अजे सोचदा समझदा नहीं पिया, अजे सोच विचार दे तलते नहीं जी रहा, अजे जिवें पशु जी रहे ने इस तरह ही जी रहा है, शरीर दे तलते, दिमागी तलते नहीं जी रहा, या अजे इस नु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, इस वास्ते उदास नहीं। जो भी थानू उदास ना दिखाई देवे, इन्हां तिन्हां च कुछ ना कुछ ते गल होवेगी, या तो बिल्कुल पशु की तरह होवेगा, दिमाग तो थले जी रहा होवेगा, शरीर के तलते कोई सोचनी विचारना नहीं है, या इसनू कोई चोट नहीं लगी, या जे कथा कीर्तन इसके हिरदे नू छू नहीं गया। संसार तो जिहड़ी चोट लगती है, मैं फिर दोहरा देवा, जब मनुख उदास होंदा है लाजमी नहीं ये अपने आप नू बदलन की कोशिश करे, हो सकता है अपने आप नू खत्म करने की कोशिश करे, खतरा है, बहुत वड्डा खतरा है, सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, कौन कर देने जो चोट खा जाते हैं और कहने नहीं जीवना की करना है जी के, इतने निराश हो जाते ने, इतने उदास हो जाते, जीवना औखा हो जाता है उन्हां लई और खुदकशी कर लेंदे ने। हां 5% ऐसे मनुख ने जो खुदकशी नहीं करते, जगत तो चोट खा के अपने आप नू बदलन की कोशिश करते ने, जैसे कि राजयोगी परतरी, ये योगी बनया, ये संत बनया कथा कीर्तन तो चोट खा के नहीं, इस तरह के पुरुष नहीं सी। और ये भी अर्ज करते हैं, इसनू चोट घरों लग गई और इसने गल नू छुपाया भी नहीं। वैराग शतक जो इसका ग्रंथ है, उहदे च कहिंदा मैं संत क्यों बनया, उन्हें कारण भी दस दिता है, जोगी मैं क्यों बनया, कोई मैं सत्संगी नहीं सी, कथा कीर्तन जाके नहीं सुनदा सी, ते मेरे उपर असर पै गया, ते मैं उदास हो गया, निराश हो गया, इस तरह की कोई गल नहीं। फिर जोगी क्यों बनया, कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मोह तिन की तन मोह तन माए रती ना, वो आन उपमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह कीना, धृग है अब लाभृद कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इनू घर तो चोट लग गई, घर वाली तो पिंगला इसकी चहेती राणी सी। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है और गुरु नानक की कृपा भी भरतरी ते बहुत ज्यादा सी, दो तीन शब्द भरतरी के प्रति सतगुरु ने उच्चारण किए ने, सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, जो मेरे चित दे च हर वकत सी, मैं कदी जिस नूं भुलाया ही नहीं, उस दे चित दे च मैं नहीं सी, जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन काग्रह कीना, मेरे चित दे च पिंगला सी हर वक्त, मैं उस नूं याद कीता है, पर पिंगला दे चित दे च मैं नहीं सी, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन काग्रह कीना, उते गनका बनी हुई, उते परश पुरश दा जो है उसके मन दे चिंतन ते उसका संग। परतरी कहिंदा जिस दिन मैनू पता चलिया कि जिसनू मैं प्राणा तो भी ज्यादा प्यार किया, हर वक्त याद किया, उसके चित दे च मैं नहीं हाँ, वो आन उपमान के संग रति फुन ता मन में गन काग्रह कीना, धृग है अबला वृत कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, ऐसी स्त्री ते लानत जिसका पति छत्रपति राजा होए और वो अपने चित दे च उसनू थां ना दे। ते भरतरी कहिंदा मेरे ते भी लानत कि मैं जिंदगी दा मकसद एक स्त्री ही समझ लिया, ये कहिंदा मेरे ते मोए धिकार, मेरे ते भी लानत,
और मोह दिकार जो मार अधीना श्रीत समूह की प्रीत तजी निरप होय जोगीश्वर ईश्वर चीना। इस तरह की रीत मैं छोड़ देती है। राजा होंदे होया जोगी हो गए, नवी जिंदगी की तलाश, ये जीवन नहीं चाहिए, ये संसार मैनू नहीं चाहिए, कुछ होर दुनिया की तलाश। गोरख कहिंदा कोई होर दुनिया भी है तो उसका चेला बन गया, वो जिहड़ी होर दुनिया है मैं उत्थे वसना इस दे च नहीं, वो जिहड़ा होर जीवन है मैनू वह चाहिए है, ये नहीं, मैं उस दे च जीवना है। ये घर तो ही चोट खा गया, भाव संसार तो ही चोट खा गया। ऐसा भी आउंदा है कि घर तो संसार तो चोट खा के कोई जोगी बन गया, संत बन गया, गुरमुख बन गया, भगत बन गया, और शब्द का चोट ये तो लाजमी 100% वो संत बनेगा, लेकिन संसार तो चोट लगी है लाजमी नहीं कि संत बने, भगत बने, परमात्मा की तलाश करे, हो सकता है खुद नूं खत्म करने की कोशिश करे। और जो बहुत सोच सोच के उदास हो गया है, बहुत उच्चा सोचे है, बहुत गहरा सोचे है और उदास हो गया है, लाजमी नहीं ये भी संत भगत बने, हो सकता है ये अपने आप नूं भुलाने की कोशिश करे। बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर दिमागी तल ते जीण वाले करीबन करीबन 99% शराबी ने 1% नूं छोड़ के और रज के पींदे ने। किसी दे ज्ञान दे नाल भरी हुई कोई वड्डी किताब पढ़ के, उदियां कवितावां नूं पढ़ के, उदा दर्शन ते फिलसफा सुन के किधरे इस चक्कर च ना पै जाना कि ते आसमान दा वासी है, इतने सतवें आसमान ते रहिंदा होवेगा। नहीं, कदी खोज करोगे तो किसी पाबे च मिलेगा, लड़खड़ंदा होया मिलेगा। मैं 1% दी जो है गल करने हैं, वो शायद बचे हुए ने। एक बड़ा बुलंद पाया हिंदुस्तान दे शायर सी फिराक गोरखपुरी, जिन्हों सारा मुस्लिम जगत हजरत करके पूजदा सी, उंज हिंदू सी, राम नारायण फिराक गोरखपुरी 50-60 किताबां दा लिखा रही, बड़ा अजीम चिंतक। दिल्ली लाल किले विच 26 जनवरी वाले दिन पंजाबी कवि सम्मेलन होंदा है, हिंदी कवि दरबार होंदा है और उर्दू दा मुशायरा होंदा है, वारी वारी एक एक दिन। और जिन्नियां साहित्यक रुचियां दे मालक लोग ने वो सारे पहुंच दिन लखां दा उत्थे इकट्ठ पहुंचदा है, हिंदी कवि सम्मेलन विच, पंजाबी कवि दरबार विच और उर्दू मुशायरे विच। शुरुआत उर्दू मुशायरे तो आउंदी है, पहले दिन उर्दू मुशायरा आउंदा है, बड़ी दुनिया पहुंचती है। यह सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट भी आउंदा है, रात दे समय वक्त कढ के मैं भी एक दिन टीवी दे सामने बैठा फिराक गोरखपुरी नूं सुनन लई। इह 50 किताबां दा लिखारी, इन्ना गहरा सोचण वाला, और इसकी सोचनी सत्तां आसमानां नूं पाड़ के भी अगे लंघ जांदी है कि अज दे दिन की आखेगा, कोई बड़ी वड्डी नज़म सुनाएगा, बड़ी कीमती कीमती बोल। और जद अनाउंसर ने फिराक गोरखपुरी का नाम लिया कोई 11वें-12वें नंबर ते, तो मेरा पूरा ध्यान एकागर हो गया, भाई इसनों सुनिए, एक एक लफ्ज इसका सुनिए। उदास होए बिना नवे जीवन की तलाश करनी बड़ी औखी है, जो इस संसार को उदास ही नहीं निरंकार की किस तरह तलाश करेगा, मुश्किल है। और जैसे शब्द चोट कर गया है, उदास हो गया है, ये बंदा अगर मुसलमान है तो शरा का पूरा पाबंद हो जाएगा, अगर ये बंदा गुरुद्वारे आ रहा है तो सारी रैत वैत का धारनी हो जाएगा एकदम, और ये बंदा अगर हिंदू है तो पूरा कर्म कांड अपना लेगा फौरन। शब्द ने चोट कर दी, संघ ने चोट कर दी है, तो जब सत्संग ने चोट की थी है
तो यह अपने इष्ट का पूर्ण तौर पर बनने की कोशिश करेगा। अगर कोई हिंदू पूर्ण तौर पर कर्मकांडी नहीं होया अजे सत्संग ने चोट नहीं की थी। अगर कोई मुसलमान पूर्ण तौर पर शरा का धारनी नहीं होया यकीन जानो अजे नमाज ने चोट नहीं की थी। अजे कुरान की तलावत का कोई असर नहीं होया, कुछ भी नहीं। कोई पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी नहीं होया अजे शब्द ने चोट नहीं की थी। अजे कथा कीर्तन ने कतई चोट नहीं की थी। ए, मन नु एक पासे कर जांदा रहा, शब्द का तीर लंघ जांदा रहा, नहीं लगे। अगर लगता तो यह पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी हो जाता। अगर सत्संग ने चोट की थी है तो पूरा कर्मकांडी हो जाना सी इसने, और जे मुसलमान है तो पक्का शरई हो जाना सी। पांच वक्त का पक्का नमाजी और पूरी कुरान की तलावत करने वाला, जकात देने वाला, रोजे रखने वाला, किसी भी नियम नु छोड़न वाला नहीं, पूरी पुख्तगी पकया ही। तो हुण जो कुछ मैं कहन लगा उन्हों थोड़ी जी गहराई नाल सरवण करना। साल दो साल पांच सत साल शरा दे च लंघे ने, कर्मकांड दे च लंघे ने, रहत वैत दे च लंघे ने, लेकिन नवी जिंदगी प्राप्त नहीं हुई, नवा जीवन प्राप्त नहीं होया। तो दो शब्द बर्दाश्त करने, यह बंदा शरा तो भी उदास हो जाएगा, ये बंदा कर्मकांड तो भी उदास हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवा, मैं गलत होवा तो मेरी सुधाई भी कर देना, ये बंदा रहत बैत तो भी उदास हो जाएगा। क्यों? जिसले शिंगार कीता है उदी झलक नहीं मिली। पांच सात साल हो गए ने, दस साल हो गए ने, तो क्योंकि सोचण वाला बंदा है, ताही तो शब्द ने चोट की थी। सोचदा ना तो चोट लगनी नहीं सी, चोट ते सियाने नूं लगेगी लाजमी। 90% खुदकशी सियाने बंदे करदे ने, मूड नहीं करदे, ओके ना होना। और अपने आप नूं भुलाण दी भी कोशिश होई करदे ने, जो बहुता सोचदे ने ते बहुते सोचण करके गमगीन हो जांदे ने, ते अपने आप दे नाल बैठना बड़ा औखा हो जांदा है। अपने आप नूं भुलाण दी कोशिश करदे ने। मनुख पुत्र नाल बैठ सकदा है, मित्र नाल बैठ सकदा है, पत्नी नाल बैठ सकदा है, पति नाल बैठ सकदा है, कोई किताब चाहिए टीवी नाल बैठ सकदा है, रेडियो नाल बैठ सकदा है, मनुख अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकदा, कोई भी नहीं बैठ सकता। क्यों? जैसे अपने आप दे नाल बैठदा सिवाय बेचैनी तो होर कुछ भी नहीं है। हर मनुख दौड़ रहा है कितों, अपने आप तो भजो, अपने आप तो भजो, दूसरे कोल बैठो। पर कौन दसे दूसरे कोल भी यही से आपे ने, यही कुछ है, दूसरा भी यही कुछ। किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भरा आया, महाराज कहते मैं गंढ के अगों खोलना चाहिए, अगो खोलन लगना अगर पहले ही खोल के रख देना, मैं एक दुख की गल करदा वो दस दुख की गल करदा। बस दो दुखी बैठ के अपने दुख नु बुला सकते ने, मिटदा कोई नहीं, यह भी मैरज करते हैं। वक्ती तौर पर बुलाण का एक ढंग आउंदा है। इस वास्ते कहने ने इकला ते रब भी ना होवे, इकल अखर दिए, जिन्हों इकल अखर की गल स्पष्ट हो गई अपने आप दे नाल नहीं रह सकता। और क्यों नहीं रह सकता? इहदे कोल कुछ भी नहीं है, ता ही नहीं रह सकता। जो अपने आप दे नाल रह सकता है बड़ा महान मनुख है, बहुत वड्डा मनुख है, यह भी मैं उहदे कोल कुछ है। ऋषि यागवलग गंगा के तट ते बैठा से, उसके मित्र ने देखा कला बैठा है ऋषि, चलो चल के साथ दे दईए, जाके कोल बैठे ते आखिया संत जी तुसी कल्ले बैठे सी ना, ते मैं थोड़ा साथ देन लई आ गया। यागवल्लभ कहन लगा तेनू किसने कह दिता मैं कल्ला बैठा सी, मैं ते अपने नाल जुड़िया होया सी, हुण तू आया मैनू कल्ला कर दिता, मैनू अपने नालों तोड़ दिता, मेरे ते रहम खा, तरस कर, मैनू अपने आप दे नाल बैठन दे। इक इह वी ढंग है, इक इह वी तरीका है। वरना इकलेपन नूं आम दुनिया ते सजा मनदी है, पता है जेल दे जिसनूं सब तो करड़ी सजा देनी होवे उन्हूं कला रखदे ने, तनहा, आपे ठीक हो जाएगा, इन्हूं पांच सात दिन कल्यां रखो, तनहाई सजा है।
ਕਿਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੇੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਲਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਸੌ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਔਖੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਆਦਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤਿੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਕੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੌਕੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੌਕੇ ਇੱਕ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਸਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਹੌਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੜਾਂਦ, ਇਤਨੀ ਜਲਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਜਲਗਾਓਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ? ਗੈਨੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੈਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ 10 ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਦੁਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਹੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਗੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੇਤੀਆ ਬੈਤੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ,
اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا، پکا شرعی، حج تے بھی جائے گا، روزے بھی رکھے گا، پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا، زکات بھی دے گا، تلاوت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا، 68 تیرتھاں دے وچوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا، سارے دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے، کمبھ دا بھی کرنا ہے، انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے، انہیں پوجا بھی کرنی، انہیں ارچا بھی کرنی، انہیں بندن بھی کرنا ہے، انہیں تلک بھی پہننا ہے، انہیں جنیو بھی پہننا ہے، انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا، یہ پکا رہت بیتیا بنے گا، اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی، دماغی تل تے جین والا ہوگی. شبد چوٹ کر گیا سی، ستسنگ چوٹ کر گیا، اداس ہویا ہے، یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی، جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں، وہ تے ہے نہیں، یہ شرح تو اداس ہو جائے گا، اس دا کی ماں یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے،

जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेण का, तो आओ हमारे पास। ए बंदे, पहले तू मौत नू कबूल कर ले, अपना अंत कबूल कर, ताई मैं तेनू बेअंत दे देश ले जा सकांगा। पहला अंत तेनू कबूल होवे, प्रथम मौत तेनू कबूल होवे। एक नजरिया सामने रख के फिर साहब कहंदे ने कि परमात्मा निरा काल दा रूप ही नहीं, निरा मौत दा रूप ही नहीं, बल्कि उते बहुत वड्डा दाता है, बड़ा दयालु है, और उसने बहुत कुछ दिता है। की कुछ दिता है? मन तन तेरा, धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, ये सब कुछ तेरी देन है, तू सड़ी झोली दे च पाई है, तू ते बहुत वड्डा दाता है, बहुत वड्डा दाता है। पर साहिबां दा ऐसा कहना है कि दात दे च बंदा फस ना जाए, किधरे दाता दे च फस के दाते नू भुल ना जाए, वली नियामत बिरादरा दरबार मिलख खाना है, धन संपदा नू वेख के, तिया पुत्रा नू वेख के, महल माड़िया नू वेख के, किधरे दाते नू भुल ना जाए, तो उसनू अपनी मौत चेते रखनी चाहिए। पर मौत नू चेते रख के किधरे इतना ही उपराम ना हो जाए कि संसार तो बिल्कुल किनारा कश हो जाए, तो साहब कहिंदे नहीं, अपनी अकल दा भी प्रयोग करे, अपनी बुद्धि दा प्रयोग करे, बुद्धि दे आसरे दे च, संसार दे च रहिंदा होया संसार तो उच्चा होवे। इस वास्ते गुरु नानक ने नारा लाया, अकली साहिब सेविए अकली पाईए मान, जिंदगी दे हर पहलू दे च तू अकल दा प्रयोग कर, पर निरी कोरी अकल दा प्रयोग ना कर। ऐसा ना होवे कि अकल बारीक हुई जाती है, रूह तारीक हुई जाती है। कई दफा मनुख फिलसफे दियां गुंजलदार गल्लां दे च ऐसा फसदा है कि जिंदगी दी हकीकत नालों संबंध टुट जांदा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने इह तिन्ने ही गल्लां कठियां ही तैनू चेते होण, तू ज्ञानी बण, बुद्धिमान बण, आलम बण, लेकिन इलम दे च खो ना जावे, तैनू मौत चेते होवे। पर मौत चेते होवे किधरे तू इतना उपराम ना हो जावे कि संसार तो किनारा कशी कर लवे, परमात्मा तैनू एक दाते दे रूप दे च दिखाई देवे, और जो कुछ तेरे कोल है ए उस दी दित्ती होई तेनू निशानी प्रतीत होवे, इस निशानी नू वेख के तू दाते दा चिंतन कर सके। गुरु नानक देव जी महाराज दा कथन है कि इस तरह दियां कथनियां संसार दे च बहुत सारियां ने, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। अनंत रूप ते अनंत गुणां दा मालिक, साधकां दी दृष्टि च जिस जिस ढंग नाल प्रगट होया, साधक लोगां ने उसे उसे ढंग नाल उस परम शक्ति दे गीत गाए, उदी उस्तति कीती। चूंकि वो हर पल हर छिन नवा है और अनेकां रूप ने, इस वास्ते परिपूर्ण परमात्मा दे अनेकां नाम पै गए। साहिब फरमान करदे ने, बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है। किसे नू ऐसा दिखाई दिता कि ओ रमिया होया, जद ऐसा दिखाई दिता तो रसना तो निकलिया राम, जद ऐसा किसे नू प्रतीत होया कि संसार दे च रहिंदा होया ओ संसार तो परे है, तो निरंजन शब्द रसना ते आ गए। जद ए देखिया कि उस दे च खिची नहीं, कशिश नहीं है, उस दे च संसार दी पकड़ उस दे च नहीं है, संसार दे च रहिंदा होया संसार दी मोह ममता उस दे च नहीं, ता सुभाविक शब्द निकलिया कृष्ण। जद ऐसा दिसिया कि उते करता है कृत नहीं है, तो रसना दे चो निकलिया करतार। जद ऐसा प्रतीत होया उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, उते एक परम शक्ति है, तो रसना दे चो सुभाविक नाम निकलिया निरंकार। ते जद ऐसा महसूस होया कि उते एक आश्चर्य रूप है, ते जिहड़ा उस दे नेड़े जांदा है उसका अंधकार दूर होके उसनू प्रकाश मिलता है, उसनू चानना मिलता है, तां सुभाविक शब्द निकलिया वाहे गुरु। इसे तरीके नाल बोली दे आधार ते, मजहबां दे आधार ते, वख वख बनी हुई संस्कृति दे आधार ते, परमात्मा दे वख वख नाम संसार दे प्रगट होए और उहदे वख वख रूप दी चर्चा धर्म ग्रंथां दे च होई। इतनी गल स्पष्ट है कि हर बंदे कुल दृष्टि वक वक है और अपनी दृष्टि दे मुताबक ही मनुख संसार

खट्टे तुरशीम खट मिठड़े ए सारे दे सारे ओ रस ने जो मैं अपने मुंह नाल परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा उचारण करदा। जितने खट मिठड़े रस ने, जितने तुरशीम रस ने हैं, सारे दे सारे रसां दा मैं आनंद उदो माण लैना जद रसना उस दे बोल मोल दिए, जद रसना उसका जप जप दिए। और इना सारे पदार्था विच मैं मसाले केड़े पाए ने, नाद संगीत दा मैं मसाला पाया है, सुनदा संगीत विच, बोलदा संगीत विच। तो जद बोलदा ते सुनदा मैं संगीत विच, सुनना होर रसदायक हो जांदा है, बोलना होर रसदायक हो जांदा है। गुरु नानक दी ए गल अज दे युग विच ते बड़ी सार्थक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, हरि दी कीर्ति रागा नाल गायन करने और सुनने। जिथे सतगुरु ने कह दिता सी कल युग विच ईश्वर प्राप्ति दा ए प्रधान साधन है, अज असी देखदे पया थकिया होया मनुख जहनी तौर ते शरीरक तौर ते, और बहुत सारे फिलसफे ए पढ़िया होया और अजोके ज्ञान विज्ञान नूं ए समझदा होया, कॉलेज ते बड़िया बड़िया यूनिवर्सिटियां तो निकलिया होया, विश्वविद्यालयां तो निकलिया होया ए मनुख, अज इस नूं अगर कीर्तन दी खुराक ना मिले, ना दित्ती गई, तो इस दे पागल होने विच कोई देर नहीं है। ए प्रधान साधन है, संसार नूं इसने बहुत कुछ जान लिया, इनू कथा राही जनाण दी हुण कोई लोड़ नहीं है कि संसार की है। इते विद्यालयां चो सिक्के आ गया है, पदार्थ की ने, संसार की है, इहदे च हुण वक्त जाया करना बिल्कुल बेमैनी है। हुण ते दसना चाहिदा उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुण की ने, ते उना गुणा नूं प्राप्त किवें करिए, ते जे किधरे उहदे गुणा नूं रागां विच मिश्रित करके गा के प्रगट किया जाए तो उदे गुण ते रसदायक ने, राग होर रसदायक कर देंदे ने, संगीत ऐसा कम कर देने जैसे कुछ मसाले पा दिते गए ने ते भोजन होर स्वादी हो गया है। तो अज दे इस कल युग दे दौर विच गुरु नानक दी ए गल विश्वव्यापी सार्थिक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, जोगी भी कीर्तन करन लग पे ने, सन्यासी भी कीर्तन करन लग पे ने, साजां दियां धुनां चर्च दे च भी वजन लग पईआं ने, कवाली संगीत मस्जिदां दे च भी आ गया है, दरगाहां दे च भी आ गया है, काबियां दे च भी आ गया है। तो एक गल ते स्पष्ट हो गई कि गाण नाल परिपूर्ण परमात्मा खुदावन ताला दे जिहड़े गीत ने, इनू संगीत दे ढाल के गायन करन नाल मन ते छेती असर पैंदा है और जल्दी सुकून मिलदा है। तो जिथे गुरु नानक दे कोलों ए रबाब दी धुन छिड़ी सी, गुरुद्वारियां तो उठ के अज मंदिर मस्जिद ते चर्चा तक भी पहुंची है और संगीत दे आसरे ते परिपूर्ण परमात्मा दे गीत गुण गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लभ रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने इह ते मसाला है संगीत, भोजन नूं होर स्वादी बना देंदा है, होर रसदायक जो है बना देंदा है। मारण नाद की है, छत्ती अमृत भाव एक जाको नदर करे, उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी श्रद्धा जो अंदर पैदा हुई है, मन में 36 प्रकार दे भोजन छक ले रहे। भोजन 36 प्रकार दा अक्सर मनिया जांदा है, श्रृंगार 16 प्रकार दा गिणन दे जो है आया। मन दियां हालतां विद्वान 9 मनदे ने, जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने, मन दे वख वख इस ढंग दियां जो है गिणतियां ने। साहिब कहिंदे 36 प्रकार दा जो खाना है मानो मैं छक लिया, मानो मैं रस मान लिया। जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए
मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे, और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह विच भोजन चलदा रहे, खुराक चलदी रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलदे ने तो मन चलदा है, विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन ते। तो साहब इसने इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून विच विकार पैदा करता है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर विच रोग पैदा करता है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकता है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं, मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे, ते उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है, क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है, मन दे च विकार आ गए ने, तन दे च पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जांदा है, विचार दोषी हो जांदे ने, शरीर रोगी हो जांदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी ए मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारां प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर दिता है बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है, आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनु खाण नु देवे ओही खांदा सी, इसदा स्वयं दा कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते, फल दे दिते, ओ खा लिया। पर जद फुल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुआं दा शिकार। इस ते जीवन बतीत होंदा रहा, जिंदगी इस तरह लंघदी गई, आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा विच बैठण दी जाच आई, सभा नूं समझण दी जाच आई, सभा विच अपने आप नूं पेश करन दा ढंग इस नूं आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे उह सभा नूं भी नहीं चंगे लगदे। सभा मैनू कैसी चंगी लगदी है और सभा नूं मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचणी दा जदों जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नूं ढा लिया तो उसनूं आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए वी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नूं दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च वी किसे नूं चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे च वी किसे नूं चोट ना पहुंचे। वैसे ते बनस्पति दे च वी जी, दाणियां दे च वी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी, पहला पानी जीव है। जित हरिया सब कोए, अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा, नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा, वनस्पति दा भी त्याग करना पेगा, दाणियां दा भी त्याग करना पेगा, क्योंकि जे ते दाणे अन्न के जिया बाज न कोए। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नु चोट घट पहुंचे। पशुआं दा कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होंदी है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नु भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है, मनुख जैसा समझना चाहिदा है। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं,
मानसिक पीड़ा नहीं सिर्फ शरीरक ही पीड़ा है तो वह बनस्पति जैसे ने वह दाणिया जैसे ने क्योंकि दाणिया नू भी जद बुनदे हां तड़पदे वह भी ने दाणिया नू भी जद बुनदे हां उछलदे ने तड़पदे ने आवाज भी करदे ने तिड़ तिड़ कर

खाइए। एक गल स्पष्ट हो गई, इन्हें भूख नहीं लगी। भूखा बंदा नहीं पूछता, भूख उसको मजबूर कर देती, खा मुंह च पा। और किस ढंग नाल खाना है? कोई बुरकियां अखां च पानियां ने, कन्ना दे च पानियां ने, मुंह च ही पानी। जो कुछ सामने पे मुंह च पाना है, कोई अख दे च थोड़ी पाना है, कन दे च थोड़ी पाना है। पर जे भूख ना लगी हो तो मनुख ऐसा कह सकता है? भरिया होया ठंडा पानी का गिलास या शरबत अगों रख देंगे, अगला कहे पीण का ढंग दसो। गल स्पष्ट हो गई, प्यास नहीं है। जेड़े जेड़े भी सिमरन का ढंग पुछते ने, किवें नाम जपिए, किवें नाम जपिए, गुस्ताखी माफ, हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवा, कोई प्यास नहीं है, कोई भुख नहीं है। ये कोई जपना भी नहीं चाहते, बस सिर्फ पुछण लई पुछना चाहते ने, और कुछ नहीं। पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। दस दस भी साल तक भी एक ही प्रश्न पुछद देखे, किवें जपिए, और सैकड़िया को पुछद देखे। तो गल स्पष्ट हो गई, भुख कोई नहीं लगी। जिस दे अंदर ये भुख पैदा हो जाती है, साचे नाम की लागे भूख, कीर्तन सुन के, कथा सुन के, गुरुद्वारे आके, बस उसकी रसना वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग पैंदी है। वो जपना किसे रंग चाहुंदा है, वो जपना किसे सरूर चाहुंदा है, क्योंकि भुख करके जप रहा है, अंदर तड़प है, प्यास करके जप रहा है, तो वाहेगुरु आखण दे च उसनू रस आ रहा है, उहदा ध्यान टिक गया है, उहदी सुरत शब्द दे नेड़े है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। हुण मैं अर्ज करां, जो जबान बोलदी है इहनू कहिंदे ने बैखरी। इस बोल तो पहले, इस बाणी तो पहले, बैखरी बाणी तो पहले ये बोल कंठ दे चाहुंदे ने, इनू कहिंदे ने मधमा। और इस तो पहले हिरदे चाहुंदे ने, इनू कहिंदे ने पसंती। इस तो पहले नाभी दे चाहुंदे ने, इनू कहिंदे ने परा। ये पता है नाभी का एक नाम है समुचे भारत दे, बिल्कुल सही नाम है धुनी। नाफ नू की कहिंदे ने धुनी, ते धुनी दा अर्थ की है आवाज। भई ये धुनी है। एक कोई देश है हिंदुस्तान जिथे नाभी नू धुनी कहंदे ने, और किधरे भी नहीं। और ये गल माण नाल आखी जा सकती है, धर्म दियां जिन्ना गहराइयां नू हिंदुस्तान दे संतां ने छोया किधरे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब उपर बचकानियां गल्लां मिलणगियां थानू, गुस्ताखी माफ। इस छोटी जी जबान नाल मैं वड्डी गल कर रहा, बाइबल दे च कुरान दे च बिल्कुल बचकानियां गल्लां मिलणगियां। कुरान शरीफ पढ़दिया पढ़दा मैं तो एक दिन हैरान हो गया, जब कुरबानी दे पेज आए, भी बैल लंगड़ा नहीं होना चाहिए जिन्हों जबा करना है कुरबानी देनी, बकरा दागी नहीं होना चाहिए, उठकाना नहीं होना चाहिए, औखे ना होना। मैं तो कई दफा हैरान हो गया, मैं भी पढ़ के ही रहा। एक धार्मिक ग्रंथ और काफी लंबी चौड़ी कुरबानी ते विचारधारा, 500 सफे बाइबल दे भी ऐसे ने, तुसी परिवार दे पढ़ भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते, इतने थले ने सभ्यता तो। उन्हां दे सामने पुराणक साखियां बिल्कुल बचकानियां ने जो बाइबल दे च ने, अजे फिर भी पुराण दियां गल्लां सुना लवांगे। चलो ठीक है, इंद्र ते चंद्रमा मिलके किसी व्यक्ति दे नाम, आखिर ममता दी मारी हुई मां भी पुत्र नूं कह दिंदी है चन्न। लगदा कोई बहुत खूबसूरत सी उसका नां, इस तरह चंद्रमा रख दिता होना है। ते पता है ये दोवें देवते, ते देवते करदे की ने। गौतम एक वकत दा बहुत वड्डा ऋषि संत, उहदी पत्नी अहिल्या उसते मन मैला करदे ने, उसका सतभंग करदे ने। इंद्र ये चंद्रमा देवते, जे देवते ही कुछ करते ने तो दैत की करते होने। पुराण ये साखियां कई दफा श्रद्धा तोड़ दया ने। युधिष्ठर कहने धर्म पुत्र, प्राचीन इतिहास दे उसनु कहने धर्म पुत्र। पर कमाल का धर्म पुत्र है जुआ खेड़ है,

다른 걸 원칭지 말아 하이다. 허금 레헷 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ जपजी साहब जाप साहब सवैये चौपाई आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समय। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नामे इस तरह के बोलने, ज्यों काहूं पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नू इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे। ज्यों काहूं पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नू बाजार विच ले आवे, लोकी उसनू वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नू इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है, अगां फरमान कर देने। तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है,

एकांत एको मन वसया आसा माए निरासो। जो समाज नाल संघर्ष करता है इनू दूजे तीजे की लोड़ आती है। जो कानून नाल संघर्ष करता है संसार नाल संघर्ष करता है यह अपना संगठन बना लेंदा है अपनी जमात बना लेंदा है ग्रोह बना लेंदा है। पर एक गल सच्चाई है दुष्टां दे ग्रोह होए ने संतां दे संगठन नहीं होए अवतारां दे संगठन नहीं होए परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहिंदा हुंदा कोई देश पूर्ण तौर ते राजनीतिक हो सकदा है पर कोई देश पूर्ण तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। कोई देश पूर्ण तौर ते धनवान हो सकदा है पर कोई देश मुकम्मल तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। और कोई देश मुकम्मल तौर ते समाजिक हो सकदा है कोई देश पूर्ण तौर ते व्यापक तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। देश दी ते गल छड्डो कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकदा। कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकदी। ते कौम दी गल बहुत वड्डी है कोई पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं आउंदा। ऐसा देखण विच आया है बड़े बड़े अवतारी पुरशां दे घर विच परिवार विच भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरश पैदा होए। कंस अधार्मिक है पर वकत दे अवतारी पुरश द्वापर युग दे अवतारी पुरश श्री कृष्ण दे उमामा ने। लेकिन समय दा अधार्मिक पुरश प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश अधार्मिक पुरश धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथ्वी चंद गुरमत तो बिल्कुल उल्ट गुरु अर्जन देव जी दे विरोधी सच दे विरोधी कोमल हुनरा दे विरोधी धर्म दे विरोधी। पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक होवे इतिहास दे च ऐसा देखण नूं नहीं मिलदा। मीरा धार्मिक है उसका पति नहीं है। सुकरात धार्मिक है उसकी पत्नी नहीं है। पर हां पति धनवान है पत्नी धनवान है पिता धनवान है पुत्र धनवान है सारा परिवार धनवान हो सकता है सारी कौम धनवान हो सकती है। जैसे कहिंदे ने रूहे जमीन दे जिथे जिथे यहूदी वस रहे ने धनवान ने चोटी दे धनवान ने। तो कोई उम्मत पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है गुणवान हो सकती है। कोई देश पूरे दा पूरा संपन्न हो सकता है शक्तिशाली हो सकता है धनवान हो सकता है। रूहे जमीन ते अज तक एक घाट बनी हुई है कोई पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होया कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होया। धर्म व्यक्तिगत है निजी है। प्यो नूं धन मिल जांदा है तो समझ लो पुत्र नूं मिल गया है पर पिता समाधि लीन हो गया है लाजमी नहीं पुत्र समाधि लीन होवेगा। पुत्र समाधि लीन हो गया है तो हुण लाजमी नहीं कहे परम आनंद पिता दी झोली दे च भी जो है पै जाएगा। तो ए निजी है और यही कारण है कि मन नाल जद कोई संघर्ष करन नूं चलदा है तो पिता सहायक नहीं आउंदा ना पत्नी सहायक बनदी है ना भरा सहायक बनदा है ना पुत्र सहायक बनदे बन ही नहीं सकदे। अंदर दी दुनिया दे च ए सारा परिवार ए कौम ए देश प्रवेश ही नहीं कर सकदा। मन नाल संघर्ष कल्या ही करना पेगा। इस वास्ते सत्तवादियां दे टोले नहीं आउंदे डाकुआं दे टोले आउंदे ने दुष्टां दे ग्रोह हुंदे ने चोरां दे ग्रोह हुंदे ने संतां दे नहीं तनहा कल्ले टावां टावां। कहिंदे ने चंदन तर न बन बन साधना पुर पुर माए। हर जंगल विच चंदन दा वृक्ष नहीं है हर गांव विच हर शहर विच कोई पूर्ण संत नहीं है। किधरे किधरे जंगल विच चंदन है किसे किसे शहर विच कोई एक अद संत है बैठा है अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद दी प्राप्ति विच लीन है परमात्मा तक पहुंचन दी जो है कोशिश विच लीन है। तो जिहड़े जिहड़े लोग मन नाल संघर्ष ना कर सके वो संसार नाल संघर्ष करन नूं तत्पर हो गए
اور انہاں لئی سما